0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
3: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. आज रविवार 2 अगस्त 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 5 बज रहे हैं.
4: Chillax with Radio Musty,
0: your number one Bollywood radio station.

वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। और एक खूबसूरत संडे की सुबह में दिल से आप सबका स्वागत है रिलैक्स पर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती के साथ। आज 2 अगस्त 2026 वीकेंड का वो दिन जहां अलार्म की आवाज़ से ज़्यादा दिल की आवाज़ सुनी चाहिए। आज का सफ़र हमने शुरू किया एक ऐसे गाने के साथ है जो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ये दिल तुम बिन न कहीं लगता नहीं, रफ़ी साहब और लता जी की जादुई आवाज़ों में। बस यही तो है सदाबहार है गाने की खूबसूरती। समय बदलता है, ज़माना बदलता है, लेकिन कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते। हर जनरेशन के दिल में अपनी जगह बना ही लेते हैं।

आज का पूरा पहला घंटा उन्हीं गानों के नाम पर जिन्होंने प्यार को अल्फाज दिए, दोस्ती को एहसास दिया और जिंदगी के हर लम्हे को शुरू में पिरो दिया। और क्योंकि आज संडे है, एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं, आज जल्दी मत भागिए, एक गर्म चाय के साथ बैठिए, मम्मी पापा के साथ दो बातें कीजिए या खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए,

0: मुस्कुराहटें होने वाली है, यादें होने वाली है, और दरअसल बहुत गाने की जो जादू है यही होने वाले हैं यहाँ पर. इट्स योर रिलैक्स शो रिया के साथ है, जहाँ संडे और भी खूबसूरत बन जाता है. एंड यस, नॉट फॉरगेट, आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं 1549912 94.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Jax with Radio Musty.
1: शोकी, आपने कभी तो नोटिस किया है कि पुरानी गाने सुनते ही हम सिर्फ म्यूजिक का नहीं सुनते, हम अपनी पुरानी जिंदगी भी दोबारा जी लेते हैं। किसी को स्कूल की याद आ जाती है, किसी को पहली नौकरी, किसी को पहला प्यार, और किसी को वो संडे जब पूरा परिवार एक साथ ब्रेकफास्ट करता है। इसलिए कहते हैं कि ओल्ड सॉन्ग्स डोंट गेट ओल्ड, दे कीप अस यंग, और ये तो सच बात है ही। तो अगर आज घर में मम्मी पापा या दादा दादी के साथ आप बैठी है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आई नो कि संडे है आज, आप इसे ज़्यादातर लोग शायद अभी तक सो रहे हैं, बट जो लोग ऑलरेडी जग चुके हैं आपसे हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अगला गाना उनकी फेवरेट यादों का हिस्सा हो। सो थोड़ा सा वॉल्यूम आप बढ़ा ही दीजिए, संडे है आज, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जब उनके चेहरे पर मुस्कान आए, समझ लीजिए कि आज का संडे सक्सेसफुल हो गया। सवेरे सवेरे ही आपका दिल खुश हो जाता है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। तो चलिए, यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही गाने लेकर आए हैं जो आपके दिल को और भी गार्डन गार्डन कर देगा। एंड यू नो, संडे के दिन, वीकेंड के दिन थोड़ा सा स्पेशल तो बनता ही है, इसलिए स्पेशल गाने हमारे स्पेशल लिसनर्स के नाम। एंड यस, आपके डेडिकेशन मैसेजेस हम थोड़ी देर में लेकर वापस आएंगे, बट इससे पहले एक खूबसूरत सा गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: राइटर कहते हैं कि संडे सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं, ये वो दिन है जब हम अपनी स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं। पूरे हफ्ते हमने काम किया, डेडलाइंस पूरी की, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ने निभाई। आज सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रखिए, खुश रहना। किसी को फोन करके बस पूछ लीजिए कैसे हो, किसी बच्चे के साथ दो मिनट हंसी बांट लीजिए, या खुद के लिए एक कप चाय बनाकर आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। कभी खुशी छोटी छोटी बातों में ही आपको मिल जाती है। कभी कभी वो एक गाना, एक मुस्कान और एक संडे की सुबह में छुपी होती है, और उसी खुशी को लेकर हम बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस। वी हैव गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती, गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट गाना अब अपने दोस्त नसरीन और किसके लिए, अब्दुल के नाम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सायरा बानर्जी की ओर से ये मैसेज आया है। हेलो सायरा बानर्जी, आपके नाम नेक्स्ट ट्रैक हम ज़रूर डेडिकेट करेंगे। एंड यहाँ पर रीना है पॉम्पलेमूस से, आप हमारे साथ कनेक्टेड है। गुड मॉर्निंग आपको रीना, एंड डेडिकेट करती है नेक्स्ट गाना अपने डियरेस्ट ब्रदर रितेश मोहन के नाम, जिनका आज जन्मदिन है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू रितेश, बहुत सारा प्यार खुशियाँ एंड सक्सेस ऑन योर बर्थडे। कह रही है कि माई ब्रदर इज़ हियर ऑलवेज फॉर अस वन एवर वी आर इन एनी डिफिकल्टीज, एंड आप बहुत ही प्राउड है टू हैव हिम एज योर ब्रदर। गॉड ब्लेस हिम विशेस फ्रॉम मामा गीता, पापा शिवा, आपकी पत्नी है श्वेता, मदर इन लॉ सीता, फादर इन लॉ राजेन, बहनी है रीना एंड मनीषा, आपके जीजा है विशाल एंड सुधीर, भांजे युहान, सुहान, श्रेयान, भांजी अहाना, बेटी रितिशा एंड छोटी सी श्रेष्ठा, एंड सभी रिश्तेदारों की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। एंड यस, यहाँ पर ऑल्सो जयशन जी हमारे साथ कनेक्टेड है। वेरी गुड मॉर्निंग आपको जयशन जी, आई होप कि आपका दिन, आपका ये संडे बहुत बहुत बहुत ही अच्छा जाए। एंड करिश्मा के नाम भी नेक्स्ट ट्रैक जाता है। चलिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सभी के नाम।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए घड़ी मिलाते चलिए पौने 6 बज रहे हैं और अभी समय हो चला है आपको बताने का कि आज का दिन आपके लिए कैसे कटेगा, क्योंकि इस योर राशि टाइम शुरू हम करते हैं।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज मन में नया उत्साह रहेगा, घर के किसी काम में सफलता मिलेगी, किसी अपने से अच्छी बात सुनने को मिल सकती है, जल्दबाजी से बचे और धैर्य रखे, दिन मुस्कान के साथ बीतेगा। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा, रुका हुआ काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बात हो सकती है, मन शांत रखें, सब अच्छा होगा। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी बातों का अच्छा असर होगा, नए विचार मन में आएंगे, किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे ना हटे, छोटी छोटी खुशियां आपका दिन सुंदर बना देंगी। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज घर का माहौल सुखद रहेगा, अपने लोगों के साथ हंसी मजाक होगा, पुरानी चिंता धीरे धीरे दूर होती दिखाई देगी और अपने मन की आवाज जरूर सुने। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, मेहनत का अच्छा फल मिलने के संकेत भी है, किसी बड़े का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, मुस्कुराकर हर काम शुरू आप कीजिए। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज सोच समझ कर लिया गया फैसला लाभ देगा, घर और काम में अच्छा संतुलन बना रहेगा, किसी प्रिय व्यक्ति से अच्छी खबर मिल सकती है, मन को हल्का रखें। लकी नंबर है आज आपका 7।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: आज रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, पुरानी मनमुटाव दूर करने का अच्छा समय है, अपनी बात प्यार से कहे, सफलता मिलेगी, दिन सुखद रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 8।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा, रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है, परिवार का साथ मन को खुशी देगा और सेहत का भी आप ध्यान रखें। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: सजिटेरियस धनुराशि,
1: आज नई शुरुआत के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, मन में सकारात्मक सोच बनी रहेगी, किसी शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बनेगा और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा आप समय जरूर बताएं। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज मेहनत का सम्मान मिलेगा और अपने काम पूरे विश्वास से करें, परिवार के साथ बताया समय क्या यादगार रहेगा, छोटी बातों को दिल पर ना ले। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है आपको, किसी पुराने काम में अच्छी प्रगति होगी, अपनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा, दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। लकी नंबर है आज आपका 10।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज मन शांत और प्रसन्न रहेगा, किसी की सच्ची बात आपका हौसला बढ़ाएगी, घर में सुख और अपनापन महसूस होगा, अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें। लकी नंबर है आज आपका 3। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम, आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

RM2 Radio Masti. Chillax with Radio Masti.

रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन संडे हमें याद दिलाता है कि रुकना भी जरूरी है। कभी अपनी डायरी खोलिए, वल्ला बहुत सारे लोग हैं जो डायरी अभी तक रखते हैं, उसमें अचीवमेंट्स कम और ब्लेसिंग्स ज़्यादा मिलेंगी। ये तो सच बात है, जहाँ पर आप दिल की बात लिखते हैं, कहीं पर आंसू भी गिरे होते हैं, कहीं पर किसी चीज़ की छाप रखते हैं, जहाँ पर आपने एक दिन कुछ ऐसा लिखा था और वहीं पर आप पन्ना उलाटते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा था। वेल, संडेज होते हैं जहाँ पर आप डायरी खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा था, या कुछ लिखना चाहते हैं ज़रूर आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप के पास कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो आप अकेले हो। हम तो हमेशा है ही आपके पास, आपके साथ है। लेकिन एक डायरी आपका दोस्त भी बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप हमसे संपर्क करते हैं, रखते हैं। एंड जैसे वी हैव देवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो देवानंद जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आप नहीं, हम लौट आए हैं, इसलिए आप बहुत दिनों बाद हमारी आवाज़ सुन रही है। एंड डेडिकेटिंग नेक्स्ट सॉन्ग फॉर बबीता दर्शी, क्रिस्टी नकुल, अर्शिया एंड रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। और ज़रूर हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम, आपके पूरे परिवार के नाम। एंड वेल, टॉकिंग अबाउट द डायरी, तो बहुत अच्छी आदत है, कई लोगों की अभी तक ये आदत बरकरार है। और अगर आप सोच रहे हैं कि डायरी लिखे या नहीं, तो ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि कभी कभार हम भूल भी जाते हैं, लेकिन डायरी में कुछ रिमाइंडर्स हमें याद दिलाते हैं कि हर दिन खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों में ही खुशी आप ढूंढिए, मिल ही जाएगी वो खुशी। तो चलिए, नेक्स्ट ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है। एंड ऑल्सो इसी ट्रैक के बाद आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. घड़ी मिलाते चलिए. सुबह की ठीक 6 बज रहे हैं. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ है सुनते हैं. नमस्कार आपको अभी.
6: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ. जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स में रेमी फेये ने मॉरिशस को फिर से दिलाया सोने का स्वाद. 33 साल के मॉरिशस के जूडो खिलाड़ी ने 90 केजी से कम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का दिल जीत लिया. 2022 के बर्मिंगम कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले रेमी फेये इस बार और अधिक मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ वापस आए ताकि पोडियम में सबसे ऊपर की जगह हासिल कर सके. वेटलैंड्स का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन करना, यही वेटलैंड्स बिल का मुख्य उद्देश्य है जिसे जल्द ही राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा. इन इकोसिस्टम्स की सुरक्षा को मजबूत करने के वास्ते इस कानून को का लंबे समय से इंतजार था. दलदल, नदियों के मुहाने, मैंग्रोव्स और कुछ तटवर्ती इलाके, ये सभी स्थान प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाढ़ के खतरे के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं. जाना बेरोंजे ने वेटलैंड्स बिल पेश किए जाने का स्वागत किया. विपक्ष की सांसद और पूर्व जूनियर मंत्री के अनुसार ये सुधार एक सकारात्मक कदम है. हालांकि उनका मानना है कि वेटलैंड्स की सुरक्षा केवल मंत्रियों के फैसलों पर निर्भर रहने के बजाय एक स्वतंत्र और पारदर्शी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए. इस्तीफा देना या फिर स्पेशलाइजेशन यानी आगे की पढ़ाई का विचार छोड़ना, सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के सामने फिलहाल यही दुविधा खड़ी कर दी गई है. स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजू ने राष्ट्रीय सभा में इस बात की पुष्टि की है. उनके अनुसार ये पाबंदी जरूरी है क्योंकि लगभग 140 डॉक्टर पहले से ही स्टडी लीव पर है जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पेरू के नाजका इलाके में पर्यटकों को ले जा रहा एक विमान क्रैश हो गया. विमान में सवार सभी 13 यात्रियों की घटना स्थल पर मौत हो गई. ये विमान नाजका लाइंस की हवाई यात्रा के लिए उड़ान भर रहा था. और अंत में मौसम का हाल. आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी, खासकर पूर्वीय ढलानों और ऊंचे इलाके पर. रात के दौरान बरसाती मौसम बरकरार रहेगा. हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठाएंगी, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगुनों के उस पार. अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है. तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच. तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान

0: 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:39 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:52 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 आप प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे, तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर सुप्रभात. संडे की ये प्यारी सी सुबह और रिलैक्स का सेकंड आवर शुरू हो चुका है सिर्फ रेडियो मस्ती पर. वेल, अब तक हमने पुराने गानों का साथ तय किया था, इसका सफर तय किया था और अब समय है थोड़ा सा रंग बदलने का. अब हम चलाएंगे थोड़े से मिक्स गाने, कुछ नए, कुछ एवरग्रीन, हर मूड के लिए एक खूबसूरत प्लेलिस्ट. बाहर सुबह धीरे धीरे रोशनी से भर रही है. वेल, आई एम श्योर कि अभी तक रोशनी की, सूरज की किरणें आपको नहीं दिखाई देगी, बट ठंड रखिए क्योंकि ये तो संसार का नियम है कि सूरज उगता है और उसकी रोशनी आपको ज़रूर दिखेगी, अभी नहीं तो थोड़ी देर में. तो कहीं पर चाय की खुशबू है, कहीं ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्या है कि संडेज टाइम मिलता है जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता कर सकता है, तो इसलिए कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट की तैयारी होती है. और कहीं लोग आज भी कंबल में एक और नींद का मजा ले रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं. इट्स टोटली फाइन है क्योंकि हम पूरे हफ्ते काम करते रहते हैं और संडे मिलता है जहाँ पर हम थोड़ी और आराम कर सके. सो इस मौके पर चौकअप मारिए एंड थोड़ी देर तक ज़रूर सो सकते हैं. तो जो भी आप कर रहे हो, शायद काम कर रहे हो, कई लोग वीकेंड के दिन भी काम करते हैं, आपको हम बुक वाश कहते हैं. सो आप कुछ भी कर रहे हो, इस संडे को हल्का रखिए, खुश रखिए और म्यूज़िक के नाम कर दीजिए. मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी ही रिया, और अगले एक घंटे तक रहेगा बहुत ही खूबसूरत गाने का साथ. अच्छी बात है और संडे की खूबसूरत वाइब्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती. योर डेडिकेशंस, योर मैसेजेस ऑन 5499 1294.
0: Chillax with Radio Mastery,
2: your number one Bollywood radio station.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: और ये बहुत ही खूबसूरत गाना हम डेडिकेट करते हैं बेटी रीमा जिनीता शेष्टा अंशनी सिल्विया और यू वी कृषि द होल सर एंड परिवार के नाम जाना जी है फ्लैग से और ये मैसेज आपने भेजा है सो ये स्पेशल गाना आपके नाम स्पेशल गाना स्पेशल लोगों के नाम साथ ही साथ वी हैव इंदिरा ओसिनी जो है पिछली व्यारे से और हमारे साथ जुड़ी हुई है आज आपकी लाडली बेटी पूनम का जन्मदिन है सो उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस कमिंग फ्रॉम प्रदीप राजीव संजनी प्रयक्षा खुशी निधीश युवीश आरवी जस्मी रोशन और सभी परिवार वालों की ओर से

अपने घर ही मिला लीजिए इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 2 अगस्त 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉमनवेल्थ गेम में 33 साल के रेमी फेये मॉरिशस के जूडो खिलाड़ी ने 90 केजी से कम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का जीत लिया है दिल। वेटलैंड्स का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन करना यही वेटलैंड्स बिल का मुख्य उद्देश्य है, जिसे जल्द ही राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इन इकोसिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के वास्ते इस कानून का लंबे समय से इंतजार था। इस्तीफा देना या फिर स्पेशलाइजेशन का विचार छोड़ना, सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के सामने फिलहाल यही दुविधा खड़ी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजू ने राष्ट्रीय सभा में इस बात की पुष्टि की। उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है जिनका वित्तीय वर्ष जनवरी 2026 में समाप्त हुआ। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने उनके कॉरपोरेट टैक्स रिटर्न और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई तिमाही के एडवांस पेमेंट सिस्टम विवरण दाखिल करने के अतिरिक्त समय दिया है। और विदेश में पेरू के नाजका इलाके में पर्यटकों को ले जा रहा एक विमान क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में 23 यात्रियों की घटना स्थल पर हो गई है मौत। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कॉमनवेल्थ गेम में रेमी फेये ने मॉरिशस को फिर से दिलाया सोने का स्वाद। 33 साल के मॉरिशस के जूडो खिलाड़ी ने 90 केजी से कम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का दिल जीत लिया। 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले रेमी फेये इस बार और अधिक मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ वापस आए ताकि पोडियम पर सबसे ऊपर की जगह हासिल कर सके। कई वर्षों की कड़ी मेहनत, त्याग और लगन के बाद आखिरकार मॉरिशस ने इस खिलाड़ी की मेहनत रंग लाई। उनकी इस जीत की बदौलत कॉमनवेल्थ खेलों में 28 साल के बाद मॉरिशस का झंडा फिर से सबसे ऊपर लहराया है। इससे पहले सन 1998 में क्वालालंपुर के मुक्केबाज रिशा सुनी ने स्वर्ण पदक जीता था। ये एक ऐतिहासिक जीत, बेहद भावुक कर देने वाला पल और रेमी फेये, उनके परिवार तथा पूरे मॉरिशस देश के लिए बड़े गर्व की बात है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि वेटलैंड्स का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन करना यही वेटलैंड्स बिल का मुख्य उद्देश्य है, जिसे जल्द ही राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इन इकोसिस्टम्स की सुरक्षा को मजबूत करने के वास्ते इस कानून का लंबे समय से इंतजार था। दलदल, नदियों के मुहाने, मैंग्रोव्स और कुछ तटवर्ती इलाके, ये सभी स्थान प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाढ़ के खतरे के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। मॉरिशस में 3 स्थानों को पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, रिवियेरा टेरोज, ब्लू बे मैरीन पार्क और पॉइंट डिस्नी। लेकिन ये नया विधेयक असल में क्या प्रावधान करता है? आशीबाचू की रिपोर्ट

0: पर विवरण याचना मिश्रा का।
1: इस विधेयक के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, वेटलैंड्स की बेहतर पहचान करना, उनकी सुरक्षा को मजबूत करना और समय के साथ उनकी निगरानी सुनिश्चित करना। सबसे पहले इस विधेयक के तहत पूरे देश में इन क्षेत्रों की बेहतर पहचान की जाएगी। इसके बाद इनके प्रबंधन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे ताकि इनके पारिस्थितिक स्वरूप, जैव विविधता और पर्यावरण को होने वाले लाभों का संरक्षण किया जा सके। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये संरक्षण मॉरिशस गणराज्य की सभी वेटलैंड्स पर लागू होगा, चाहे वो सरकारी भूमि पर हो या फिर निजी संपत्तियों पर। इस विधेयक में इन प्राकृतिक क्षेत्रों को आपदा के जोखिमों यानी खतरों और जलवायु परिवर्तन के रणनीतियों में शामिल करने का भी प्रावधान है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मॉरिशस में वेटलैंड्स की स्थिति की बेहतर निगरानी करना है। इसके लिए एक ऐसा ढांचा स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से जानकारी एकत्र की जा सकेगी और समय के साथ इन क्षेत्रों में होने वाले बदलावों पर नजर रखी जा सकेगी। ये पहल देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का भी हिस्सा है। मॉरिशस साल 2001 से रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, जो वेटलैंड्स के संरक्षण और उनके सतत उपयोग से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। वेटलैंड्स बिल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य एक नया कदम उठाना है, मौजूदा कानूनी ढांचों को मजबूत करना और इन प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अधिक स्पष्ट कानून आधार प्रदान करना।
0: जोआना बेरोंजे ने वेटलैंड्स बिल पेश किए जाने का स्वागत किया। विपक्ष की सांसद और पूर्व जूनियर पर्यावरण मंत्री के अनुसार ये सुधार एक सकारात्मक कदम है। हालांकि उनका मानना है कि वेटलैंड्स की सुरक्षा केवल मंत्रियों के फैसलों पर निर्भर रहने के बजाय एक स्वतंत्र और पारदर्शी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा उनका इरादा कई संशोधन प्रस्तावित करने का है ताकि वेटलैंड्स इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से नियंत्रित और प्रबंधित किया जा सके। जोआना बेरोंजे ने इन विषयों पर हमारी सहयोगी आशी बाचू के सवालों के जवाब दिए। विवरण याचना मिश्रा।
1: हम इस विधेयक के लक्ष्य का समर्थन करेंगे। एक पारदर्शी, स्वतंत्र और काम करने वाला गवर्नेंस चाहिए। हम सुधार प्रस्तावित करेंगे ताकि ये विधेयक असल में वेटलैंड्स का संरक्षण करे और साथ में नागरिकों के अधिकारों का सम्मान भी। इसमें विशेषज्ञों, सिविल सोसाइटी, स्थानीय प्रशासन को जोड़ना चाहिए। हम प्रस्ताव रखेंगे कि इस समिति में स्वतंत्र सदस्यों, एनजीओस, अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए जो इस वक्त इस समिति में शामिल नहीं। वेटलैंड्स में व्यापारिक गतिविधियों को रोकने या कम करने का प्रस्ताव भी दे रहे हैं, साथ में निर्णय लेने से पहले सलाह मशवरे करने की सिफारिश भी दे रहे हैं और न कि बाद में, जैसा कि विधेयक में अभी के लिए लिखा हुआ है।
0: इस्तीफा देना या फिर स्पेशलाइजेशन यानी आगे की पढ़ाई का विचार छोड़ना सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के सामने फिलहाल यही दुविधा खड़ी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजू ने राष्ट्रीय सभा में इस बात की पुष्टि की। उनके अनुसार ये पाबंदी जरूरी है क्योंकि लगभग 140 डॉक्टर पहले से ही स्टडी लीव पर हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। हालांकि रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। प्रणव बियागी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: जी हां, मंत्रालय के कुछ उच्च अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जिन डॉक्टरों को ऐसे खास क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेना है जहां विशेषज्ञों की कमी है यानी स्पेशलिस्ट की कमी है, उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है। इन क्षेत्रों में एनेस्थीसिया, रिएनिमेशन और न्यूरोसर्जरी जैसे विभाग शामिल हैं। हालांकि इसके लिए पहले मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट को वर्तमान में लागू प्रतिबंधों में इन विशेष छूटों को मंजूरी देनी पड़ेगी। फिलहाल अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव के लिए लगभग 50 आवेदन स्थगित किए गए हैं। कई डॉक्टर विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए चीन जा रहे हैं, खासकर डर्माटोलॉजी के क्षेत्र में, जबकि मॉरिशस में ये क्षेत्र पहले से ही पर्याप्त रूप से विकसित

0: उपस्थित हैं और इसमें काफी स्पेशलिस्ट हैं। वापसी के बाद कुछ डॉक्टर निजी क्षेत्र में काम करने का विकल्प भी चुन लेते हैं। ये प्रतिबंध कितने समय तक जारी रहेगा, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि राष्ट्रसभा में मंत्री अनिल बेचू ने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि इस साल अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव के लिए किए गए आवेदनों को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
1: और जैसा कि हमने पहले से ही सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है जिनका वित्तीय वर्ष जनवरी 2026 में समाप्त हुआ। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने उनके कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई तिमाही के एडवांस पेमेंट सिस्टम विवरण दाखिल करने के वास्ते अतिरिक्त वक्त दिया है। इस बात का ऐलान मंगलवार को जारी एक बयान में किया गया। जमा करने की अंतिम तारीख जो पहले शुक्रवार 31 जुलाई तय कर दी गई थी, वो अब उसे बढ़ा दी गई है। शैली नियबन की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का।
0: संबंधित कंपनियों के पास अब सोमवार 31 अगस्त 2026 तक अपना कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न एपीएस स्टेटमेंट जमा करने और यदि आवश्यक हो तो बकाया कर का भुगतान करने का समय होगा। ये समय सीमा बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सेवा फाइनेंस बिल 2026 के लागू होने के बाद ही उपलब्ध होगी। इस विधेयक में वित्तीय साल 2026-2027 के लिए कई कर संबंधित उपाय शामिल हैं। जब तक ये कानून प्रभावी नहीं हो जाता तब तक कंपनियां अपनी ऑनलाइन प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर सकती हैं। इसी कारण एमआरए को संबंधित कंपनियों के लिए समय सारिणी में बदलाव करना पड़ा है। इसका सीधा परिणाम ये होगा कि घोषणा पत्र या एपीएस स्टेटमेंट जमा करने अथवा कर भुगतान में देरी पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि सभी औपचारिकताएं 31 अगस्त 2026 तक पूरी कर ली जाएं। गौरतलब है कि एमआरए की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 30 जून 2025 तक आयकर रजिस्टर में कुल 6,177 करदाता पंजीकृत थे। इनमें लगभग 94,000 कंपनियां शामिल थीं, जबकि 12,000 नए पंजीकरण दर्ज किए गए थे।
1: विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, पेरू के नाजका इलाके में पर्यटकों को ले जा रहा एक विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 13 यात्रियों की घटना स्थल पर मौत हो गई। ये विमान नाजका लाइंस की हवाई यात्रा के लिए उड़ान भर रहा था। प्रशासन मृतकों की पहचान करने और परिजनों से संपर्क करने में जुटा है। रूस की राजधानी मॉस्को में शनिवार शाम एक रेस्टोरेंट के पास भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। यह हादसा मॉस्को के एक इलाके में ऊंची इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट में हुआ। रूस की सरकारी मीडिया और मॉस्को पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के दूसरे चरण में हमास के हथियार डालने के लिए तैयार होने के बाद इसराइल ने शनिवार को फिर से गाजा पर हमला कर 2 लोगों को मार डाला, साथ ही दवाओं के गोदाम को भी नष्ट कर दिया। मध्य पूर्व में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के हमले की धमकी दे रहा है तो ईरान भी पलटवार की बात कर रहा है। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी ऊर्जा मूल ढांचे पर नए हमले का आदेश देते हैं तो वे मध्य पूर्व के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएंगे। उधर स्पेन ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि 30 जुलाई को सेटा में अनियमित तरीके से घुसे करीब 50,000 लोगों में से 48,000 से अधिक को 48 घंटे से भी कम समय में मोरक्को वापस भेज दिया गया है। स्पेन के गृह मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को करीब 60,000 प्रवासी सेटा में घुस गए थे।

ये आंकड़ा एंक्लेव की कुल आबादी का करीब 70% था। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी, खासकर पूर्वीय ढलानों और ऊंचे इलाके पर। रात के दौरान बरसाती मौसम बरकरार रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगुनों के उस पार, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:39 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:52 पर।

0: चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कॉमनवेल्थ खेल में 33 साल के रेमी फेये मॉरिशस के जूडो खिलाड़ी ने 90 केजी से कम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का जीत लिया दिल। वेटलैंड्स का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन करना यही वेटलैंड्स बिल का मुख्य उद्देश्य है, जिसे जल्द ही राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इन इकोसिस्टम्स की सुरक्षा को मजबूत करने के वास्ते इस कानून का लंबे समय से इंतजार था। इस्तीफा देना या फिर स्पेशलाइजेशन का विचार छोड़ना, सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के सामने फिलहाल यही दुविधा खड़ी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बैजू ने राष्ट्रीय सभा में इस बात की पुष्टि की है। उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है जिनका वित्तीय वर्ष जनवरी 2026 में समाप्त हुआ। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने उनके कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई तिमाही के एडवांस पेमेंट सिस्टम विवरण दाखिल करने के वास्ते अतिरिक्त समय दिया है। और विदेश में पेरू के नास्का इलाके में पर्यटकों को ले जा रहा एक विमान क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में 13 यात्रियों की घटना स्थल पर हो गई है मौत। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम फैजान को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: आइए शोक समाचार सुनते हैं। मो सेलमो गाफ्रे लियोशे तेरूज में 84 साल की 84 years old की श्रीमती जियाना कामा नायडू जिन्हें सब लोग वसन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री दुर्गेश वेंकटा साधु के घर मोसलमो गाफ्रे लियोशे तेरूज से निकालकर दफनाने के लिए बुआमोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। फैब्रिस लेन मोंडालबेया में 82 साल के 82 years old के श्री नरदेव गुदुरी जिन्हें सब लोग सुरेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री वीरेन गुदुरी के घर फैब्रिक्स लेन मोंडालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंडालबेया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। हॉस्पिटल रोड बोआरूज पम्पलेमूसेज में 77 साल के 77 years old की श्री जीवन झरी

श्री जीवन झरी, जिन्हें सब लोग जीवन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री रवि झरी के घर हॉस्पिटल रोड वाहोश पंपले मुसे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM, नंबर 47 Avenue de la Dignité, résidence Kennedy, 4 Beaune, mais number 47, Avenue de la Dignité, résidence Kennedy, 4 Beaune, mais Satasi, Salki, 87 years old, qui je te mette, Hema Kunti Mitu, पैदाइशी नाम कुलमन, और जिन्हें सब लोग साबित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती नीलावती रामलाल के घर नंबर 47 एवेन्यू डेला जीनीते रेजिडेंस केनेडी 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM, रॉयल रोड एक्वायो में 59 साल के 59 years old के श्री रुदामन बिसुनी, जिन्हें सब लोग संजय के नाम से भी जानते थे, और जो GSK ट्रैवल के पूर्व चालक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विमी बिसुनी के घर रॉयल रोड एक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून, मारी जानी 15 वाकवा में 71 साल के 71 years old के श्री निरंजन सिंह नाओ, जिन्हें सब लोग अंजन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री रवि नाओ के घर मारी जानी कैंस कुंतों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM, Avenue La Seringue, Ligne Palma 4 Beaune, mais. Avenue La Seringue, Ligne Palma 4 Beaune, mais. Assi, Salki, 80 years old, qui Shri Budhan Ramban, jine sab log Bulun ke naam se bhi jante the, unki mrityu ho gayi hai. Unki arthi मंगलवार 4 अगस्त को दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती कमला रामबन के घर एवेन्यू ला सेरेंग लेन पाल्मा 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 4 अगस्त एट 1 PM, रॉयल रोड सेंट जूलियन डूटमोमें 94 years old की श्री लक्ष्मी प्रसाद मोहबिया, जिन्हें सब लोग विद्या के नाम से भी जानते थे, और जो डॉक्टर विश्वास मोहबिया के पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनकी पत्नी श्रीमती विश्वानी मोहबिया के घर रोड सेंट जूलियन दुतमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जूलियन दुतमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM, नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाले पीटो में 48 साल की 48 years old की श्रीमती नंदिनी देवी सिंह, पैदाशी नाम दुबुरी, और जिन्हें सब लोग सीमा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके पिताजी श्री रमेश दुबुरी के घर नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाले पीटो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थैंगबाओ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM, वुडू लेन थ्रियोले में 72 साल के 72 years old के श्री आनंद कुमार बिसिसाओ, जिन्हें सब लोग आनंद के नाम से भी जानते थे, और जो थ्रोबिश होटल के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनकी पत्नी श्रीमती रागिनी बिसिसाओ के घर

मुडुलेन ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एसएसएस ट्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड माउंट अल्बिया में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रौती गणेश पैदाइशी नाम नंदू सिंह और जिन्हें सब लोग इंदू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री नवरत्न गणेश के घर रॉयल रोड मौदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड वालिता में 79 ईयर्स ओल्ड की श्री अपाल स्वामी अचना जिन्हें सब लोग रमुती के नाम से भी जानते थे और जो सेजों दे पुलिस अचना के पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर की दो बजे उनके बेटे श्री चंद्रदेव आत्माराम अचना के घर रोड वालिता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। सेकंड सौ सैंपिया में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सूर्यवती पेंटिया पैदाइशी नाम वेंकट रामिया और जिन्हें सब लोग राधा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर सैकों सौ सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 2:30। ड्रापे गली बेलरोज में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बागिया बुल्का जिन्हें सब लोग बागिया भवित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे उन्हीं के घर ढापे गली बेलहो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोरेगा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रिवालेन रोड क्रेव क्यूए में 36 साल की 36 ईयर्स ओल्ड की कुमारी तुशीला दाबिया जिन्हें सब लोग रचना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर के साढ़े तीन बजे उनकी माँ श्रीमती माला दाबिया के घर रिवालेन रोड क्रेवक्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रेवक्या की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। एसएसओ रोड इलो कंजाब में सैंतीस साल के 27 ईयर्स ओल्ड के श्री शुभम ओकिल की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के साढ़े चार बजे उनकी माँ श्रीमती पूनम ओकिल के घर एसएसओ इलो कौंजाब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंजाब की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 4:30। लातेया कुपे पोपेनेसी क्यूपिप में 97 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती फुलमत सहाय पैदाइशी नाम अलुल और जिन्हें सब लोग मुनी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर लातिया कुपे पॉप एनएससी क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले

0: जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 10 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी एक गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5,
3: East, West,
2: 96.4,
3: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: गुड गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 7 बज रहे हैं।
5: टाइमलेस तड़का
1: RM2
5: टाइमलेस तड़का।

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: जी फिर से स्वागत है आप सभी का. गुड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. एंड यस, आप कदम रख रहे हैं न्यू टाइमलेस तड़का. द फर्स्ट आवर ऑफ टाइमलेस तड़का, ये वो पल है जहां पुरानी और नए गानों का स्वाद एक साथ मिलता है. जी हाँ, हम मिक्स गाने ही लेकर आए हैं आपके नाम. कुछ धुनें जो बचपन की याद दिलाती है और कुछ गाने जो आज की प्लेलिस्ट में भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं. संडे का अपना ही अंदाज होता है. किसी के घर में गरम गरम नाश्ता बन रहा है, कहीं पूरा परिवार एक साथ बैठा है और कहीं कोई अपनी चाय के साथ बस रेडियो मस्ती का मजा ले रहा है. और आज का दिन किसी रेस का नहीं है, आज का दिन है मुस्कुराने का, अपनों के साथ समय बिताने का और दिल को हल्का रखने का. तो वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वीकेंड को और भी खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि अगले कुछ पलों तक टाइमलेस तड़का में बजेंगे वो गीत जो आपके दिल को खुश तो कर ही देगा. नॉट टू फॉरगेट आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: और आखिर में लिचारिसन ऑन टारगेट इस मैच के 49th मिनट पर डांसो को मिला रेड कार्ड और 10 खिलाड़ियों के साथ भी चोटेनहम हॉटस्पर ने चेल्सी को 2-1 से परास्त किया। मैनचेस्टर सिटी 1 इंटर मिलान 1, पेनाल्टी सत्र के बाद इंटर मिलान की जीत हुई 3-1 से। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल एथलेटिको मैड्रिड को 2-1 से परास्त किया। ब्रायन एम्बेमो का एक शानदार डबल फॉर द रेड डेविल्स। उल्लेखनीय है कि 15 ईयर ओल्ड जे जे गैब्रियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपना पहला सीनियर डेब्यू खेला और बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी किया जे जे गैब्रियल ने। इस बीच कार्डिफ सिटी ने एएस रोमा को 4-1 से हराया और आर्सेनल ने कल एवे जाकर जिरोना को 4-1 से तोड़ा। काई हैवर्ट्स के बाद क्रिस्टस जोलिस का दूसरा गोल, डोमान और गैब्रियल रेजुस ने बाकी गोल स्कोर किए। आर्सेनल ये मैच 4-1 से जीत गया। जोलिस लैंड्रो थोसा को रिप्लेस करने के लिए उसे साइन किया गया है और उसने कल अपना पहला गोल भी स्कोर किया। सो फ्रेंडली मैचों में ही रियल मैड्रिड और फ्योरेंटिना ने मैच ड्रॉ किया कल 2-2। एंड्रिक के बाद अलेक्सी सीरिया टारगेट फॉर रियल मैड्रिड। इन्हीं फ्रेंडली मैचों में आज रात लिवरपूल के लाल खेलेंगे लीड्स यूनाइटेड के विरुद्ध आज रात 12 बजे। चेल्सी ने फिर एक नई साइनिंग की है। ब्राइटन का पुराना फॉरवर्ड 35 ईयर ओल्ड डैनी वेलबेक ने स्टैमफोर्ड ब्रिज में 2 साल के कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले साल वेलबेक ने अपने क्लब ब्राइटन के साथ 13 प्रीमियर लीग गोल स्कोर किए थे और लगता है कि शाबी अलोंसो का चेल्सी अपना बैकअप प्लान तैयार कर रहा है। मोहम्मद सलाह कहाँ जाएगा? अरब लीग से हटकर टर्किश लीग में जाना चाहा। बेसिकतास ने हाथ बढ़ाया किंतु ऐसी रिपोर्ट है कि ऐन मौके पे ट्राबज़ोंस्पोर अब इस रेस में लग गया है। पर इन सब में कहीं मोहम्मद सलाह पीछे न रह जाए, सुनते रहिए। इस बीच ब्रैडली बाकुला और लिवरपूल का सौदा और सागा कहां तक पहुंचा है ये भगवान ही जाने। ट्रांसफर एक्सपर्ट फैब्रिजियो रोमानो को मानकर चलें तो दे आर क्लोज, पर कितना क्लोज पता नहीं। किंतु खबर ये भी है कि पेरिस सेंट जर्मेन ने मैग्नस अकलियुश को 50 मिलियन यूरो में साइन कर लिया है और आर्सेनल तथा ब्रूनो गिमारिस ऑल सेट, लगभग 77 मिलियन पाउंड में ये सौदा खड़ा खड़ा तय होने जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा आईसीई के सीजन 4 का पहला मैच जीत गए कैंपस अब्रोड लायंस 32 रनों से। कल शाम एसएसओ क्रिकेट ग्राउंड मापू में कैंपस अब्रोड लायंस ने 8 विकेट गंवाकर 141 रन बनाए तो जवाब में एएमजी पैंथर्स 109 रन ही बना पाए। दिलजीत बना मैन ऑफ द मैच और आज सुबह 9 बजे मैच नंबर 2 कंटिनेंटल चीताज वर्सेस एपीपी लेपर्ड्स और मैच नंबर 3 भी आज दिन के 1 बजे खेला जाएगा बिटवीन वन हेल्थ जगवाज वर्सेस थॉमस कुक टाइगर्स। रोशनवा में द दुदला बीमा चैलेंज कप, द दुदला बीमा सुवेनियर कप के अंतर्गत आज शाम 3:30 बजे वहीं पर प्लेन दे रोश का मुकाबला थ्रियोले कैडेट से। रोड टू ग्लासगो 2026 एकदम सफल, जीते रहो और जीतते रहो। नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
3: You're listening to RM2, a Radio Masti.

हमारे साथ कनेक्टेड है परी, प्यारी सी हमारी परी, एंड आप रिक्वेस्ट कर रही है गाना फोर पापा संजय, मामा सोमा और भाई अवि, इन तीनों के नाम और आप के नाम भी ये खूबसूरत गाना जाता है। हैव अ वंडरफुल संडे।

0: सीमलेस तड़का
1: RM2
2: 7:54 और अभी तो टाइम भी हो चला है जाने का, लेकिन जाने से पहले एक दो मैसेजेस हम यहाँ पर देकर जाएंगे. एंड नेक्स्ट ट्रैक जाता है प्रिंसेस अनायका रामचरित का नाम, जिनका आज जन्मदिन है. हैप्पी बर्थडे टू यू माई डियर अनायका, बहुत ही प्यारा नाम है. एंड आई होप कि आपका बर्थडे उससे भी प्यारा हो. एंड आज आप 5-6 साल की हो गई है. सो मेनी मेनी बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम मम्मा सुधा, पापा हिमीश, बहन है कृतिका, दादी, नानू एंड द होल बच्चू परिवार जो है मुका से.

एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. वैसे यहाँ पर एक और बर्थडे मैसेज वी हैव एंजल माही जो आज सेलिब्रेट कर रही है अपना सातवां जन्मदिन, 7 years old. हैप्पी बर्थडे टू यू माही, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेज कमिंग फ्रॉम ममान रिशा, निशा, पापा नीरज, विजय, नाना, गियान, नानी, चांद, दीदी, जेमिशा, व्यान, भाई एंड टुकिया परिवार जो है खुशनुआ से, एंड मामी वर्षा से भी बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेज आपके जन्मदिन पर. वैसे हम भी हैं यहाँ पर विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. चलिए तो जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी संडे. आपका ये वीकेंड का आखिरी दिन, ये संडे बहुत ही अच्छा जाए, अपनों के इर्द गिर्द आप खुद को पाए एंड आप हमेशा मुस्कुराते रहे. सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड कीप कनेक्टेड टू RM2 Radio Masti. This is your channel Starka and मेरे बाद आपको मिलेगा पड़ी का साथ थोड़ी ही देर में. So bye bye, take care और रिया की ओर से बहुत सारा प्यार. Radio Masti.

0: लाला जा इबखत फजर के आठ बजलबा सबको एक नमस्ते और आदाब फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा कॉमनवेल्थ खेल में रिमी फेये मॉरिशस के फेनों से दिलाइलन सोना के स्वाद 33 बरिस के उमिर होला मॉरिशन मूल के रिमी फेये जूडो खिलाड़ी 90 किलोग्राम से कमती होला कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता के भर्ती मॉरिशस के दिल जीत लेलन साल 2022 के बर्मिंगम कॉमनवेल्थ खेल में सिल्वर मेडल जीते होला रिमी फेये इहला आर जस्ती मजबूती और दृढ़ संकल्प के संगे वापस अलन वेटलैंड्स के संरक्षण और नियमन प्रबंधन करे के हये वेटलैंड्स बिल के अहम उद्देश्य है जिसे जल्द ही राष्ट्रीय सभा में पेश करल जाए ई इकोसिस्टम की सुरक्षा के आर जस्ती मजबूत करे खातिर ई कानून के लंबा समय से इंतजार रहल दलदल नदी के मुहाने मैंग्रोव्स और तटवर्ती इलाका ई सब स्थल प्रकृति के संतुलन बनाए रखे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला और बाढ़ के खतरा के असर के भी कमती करे में मदद करेला जोआना बेरांजे वेटलैंड्स बिल पेश करे के स्वागत कर लन उनकर अनुसार इस सुधार एगो सकारात्मक कदम है काहे कि वेटलैंड्स की सुरक्षा न खाली मंत्री लोगन के फैसला पर निर्भर रहेला बकेर ये एगो स्वतंत्र और पारदर्शी व्यवस्था पर आधारित होवे के चाहिए एकर संगे संगे उनकर इरादा कई गो बदलाव प्रस्तावित करे के बा जेमे वेटलैंड्स इलाका में व्यावसायिक गतिविधि के नियमन से सकी नियंत्रित करे इस्तीफा देवे या फिर स्पेशलाइजेशन के विचार छोड़े की सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टर के सामने हबीले यही दुविधा बाती स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू राष्ट्रीय सभा में ई बात की पुष्टि कर लन उनकर अनुसार ई पाबंदी जरूरी है कहे कि लगभग 140 डॉक्टर अघिये से ही स्टडी लीव पर हवन जा बकेर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के कमी महसूस हो बता तो दूसर देश में पेरू के नाजका इलाका में पर्यटक के ले जाए होला एगो विमान क्रैश हो गल बाते विमान में सवार सब 13 यात्री के घटना स्थल पर ही मौत हो गल बाते तो दूसर देने में रूस के राजधानी मॉस्को में सामदी सांझ के एगो रेस्टोरेंट के भीड़ी भीषण विस्फोट हो गल जिमें 3 जना की मौत हो गल बाते और 21 आदमी के कस के घाव लग गल बा तेकरे संगे हमनी के भोजपुरी समाचार समाप्त ध्यान देवे खातिर धन्यवाद नमस्ते और आदाब
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: चलिए दोस्तों वेलकम करते हैं आप सभी का सुबह के 8:08 एंड विद दिस ब्यूटीफुल भोजपुरी तड़का आपका हम स्वागत करते हैं और आपके मूड को सेट करने की कोशिश ऑन द संडे मॉर्निंग। मैं हूं फरी आपके साथ। इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का जहां पर होने वाले हैं आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। आई डू होप संडे मॉर्निंग आज आपकी एकदम मस्त शुरू हुई है और आज का दिन बनाना है खास। इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड इट्स टाइम टू चिलैक्स। कुछ गाने ऐसे जो आपके मूड को सेट रखेंगे फॉर दिस संडे। और साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स, नॉट टू फॉरगेट कनेक्टेड है आप, सो ड्रॉप इन आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 54991294 पर। संडे का दिन बनाना चाहते हैं खास इसे फॉर योर लव्ड वंस, तो बस आपके मैसेजेस के जरिए अपना प्यार आप उन तक पहुंचा सकते हैं। बाकी गाने तो हम चलाते रहेंगे, साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 11। और अभी के लिए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल।
1: आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी, खासकर पूर्वीय ढलानों और ऊंचे इलाके पर। रात के दौरान बरसाती मौसम बरकरार रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठाएंगी, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:39 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:52 पर।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Masti.
4: La Bilbil Kaji retourne et Cote Winners.
5: Bilbil Kaji de retour Cote Winners. Du 24 juillet au 6 août uniquement. Le poulet entier Marilyn de 500 grammes à 94,95 roupies et à l'achat du chauffe-eau à gaz West Point de 6 litres à 4,590 roupies, recevez un fer à repasser Philips Classic Dry d'une valeur de 1,190 roupies gratuitement. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
6: On est tous winners.
7: Timeless Tadka.
8: RM2.
7: Timeless Tadka.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: एंड वेलकम मॉर्निंग टाइम और संडे मॉर्निंग में आपके लिए लेकर आए हैं एक खास गेम जहां पर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम. खेले आप एमबीसी एंड राजस्थान वर्क्स के साथ और स्टैंड अ चांस टू विन 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. 12 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक एट SBICC Pi सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक. सो यहां पर आपको मिलने वाला है काफी कुछ. एंड इस इनाम को जीतने के लिए आपके लिए सिंपल सा सवाल. रॉकस्टार फिल्म आई थी, यस अगर आपको याद हो तो एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रॉकस्टार और ये रिलीज हुई थी इन द ईयर 2011. आपको हमें बताना है दैट इस फिल्म में जनार्दन उर्फ जॉर्डन का किरदार किसने निभाया था. बात कर रहे हैं 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार की और इस फिल्म में जनार्दन उर्फ जॉर्डन का किरदार किसने निभाया था. वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स 5499-1294 पर अपने पूरे नाम और पते के साथ. ऑल द बेस्ट.

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: So, well, question आपसे पूछा था that जनार्दन उर्फ जॉर्डन का किरदार रॉक स्टार फिल्म में किसने निभाया था and the right answer is रणबीर कपूर. Yes, रणबीर कपूर ने निभाया था ये iconic किरदार of जॉर्डन. और चलिए यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. Lucky draw के बाद lucky winner आप है हेमा पूजा गुलाब भोवन. आप है वालिद फ्रेड से. क्या बात है, नाम में ही वन है तो आपका जीतना तो बनता था. So, आपको कहेंगे congratulations. सोवेल हेमा पूजा गुलाब भोवन जी, आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब और जीती है आपने 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जैन्स लिटिल इंडिया शाही थाली, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कास्टोवर कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट SBI CC पाए 10:15 से लेकर रात के 9 बजे तक. साथ ही आपको बता दिया आप वहां पर काफी कुछ एंजॉय कर पाएंगे, इंटरनेशनल होमो शॉपिंग, साथ में एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक shows, fashion shows, live performance by Indian Idol singer Parinay Jain. Special appearance होने वाला है Bollywood choreographer Dharmesh sir का. कानमा show होने वाले हैं. यहाँ पर blood donation camps भी organize किए जाएंगे और साथ ही एक wonderful food festival आपके लिए. Organized by Event Works Limited and आपको एक बार फिर याद दिला दे 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक 2026 at SBI CC 5 सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक. So, जीतने के मौके और भी मिलेंगे और गुड म्यूजिक तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. अभी के लिए लेकर

आए हैं योर टाइमलेस तड़का कुछ गाने ऐसे जो आपको हैप्पी फील करवाएंगे ऑन दिस संडे तो अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ आप भी कनेक्टेड हैं सो आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आपका प्यार रहेगा इंतजार ऑन 5499 1294 फ्रॉम द फिल्म दिल तो पागल है एंजॉय दिस वन हैप्पी संडे

0: US Tadka.
1: RM2.
2: तो चलिए दोस्तों, संडे का दिन है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में। आपके लिए हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ गाने ऐसे लेकर आएं कि आपके लेजी मॉर्निंग में थोड़ा सा म्यूजिकल डोज हम भी ऐड कर पाएं। सो आई डू होप आपका संडे एकदम मस्त स्टार्ट हुआ है और आज नो इट्स टाइम टू रिलैक्स। तो अभी भी अगर आप बेड पर लेटे लेटे शो को एंजॉय कर रहे हैं, वी टोटली अंडरस्टैंड एंड वी अप्रिशिएट दैट, क्योंकि थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना, खुद को रिचार्ज करना, ये भी जरूरी है। एवरी डे तो अलार्म क्लॉक हमें उठाता है, भगाता है, लेकिन संडेज होते हैं थोड़े से स्लो, जहां पर नो अलार्म क्लॉक्स, नो डेडलाइंस और ना ही कोई ज्यादा स्ट्रेस। बस एंजॉय करना है दिन को और स्लोली स्लोली हर एक मोमेंट को आप स्पेशल बनाएं। अभी के लिए आपका साथ, आपका प्यार ऑन 5499-1294। सो थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस के लिए। सो यहां पर कहते हैं हेलो परी, हेलो जी, एंड नेक्स्ट ट्रैक टू आर एंजल माही हु सेलिब्रेटिंग हर सेवेंथ बर्थडे आज। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू Dearest Mahi, it's your birthday आज, and special wishes लेकर आई हैं मामा निशा, साथ में है रिशा, पापा विजय, नीरज, नितीश, नाना ज्ञान और नानी चांद, सिस्टर जमिशा, वानिया है, भाई व्यान, सभी दुखिया परिवार खुशनुआ से। स्पेशल विशेज लेकर आई हैं मामी वर्षा ऑन योर स्पेशल डे। सो माही, loads of good wishes ऑन योर स्पेशल डे, स्टे ब्लेस्ड हमेशा और हमेशा हमेशा अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलती रहे, यही विशेज हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ललिता जी आप भी आ गई हैं, कहती हैं गर्मा गर्म चाय, फुल वॉल्यूम पर रेडियो मस्ती, इससे बेटर मॉर्निंग क्या हो सकती है, ये तो हम भी मानते हैं। सो थैंक यू सो मच और आपकी संडे को खास बनाएंगे, आपकी संडे को खास बनाएंगे विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। आपका साथ था है स्पेशल, सो गाना होगा आपके नाम। एंड यहाँ पर श्वेता हुकुम साथ दे रही है बोनाकाय से, डेडिकेटिंग रोमांटिक गाना फॉर हस्बैंड रोशन, और ये है उनकी बुबू रानी की ओर से, एंड वॉन्ट टू टेल हिम दैट लव यू सो मच हस्बैंड जी, ये हुई ना बात। देखिए सुबह सवेरे ऐसे रोमांटिक स्टार्ट होते हैं तो फिर संडे ही क्या, पूरा हफ्ता अच्छा ही जाने वाला है। सो आई एम श्योर दैट हबी जी इज स्माइलिंग इस वक्त और वाइफ ने तो बना दी है मॉर्निंग सो स्पेशल। सो गाना होगा उनके नाम एंड एवरीवन हुज कनेक्टेड हमारे साथ। ऐसे ही आपके स्वीट मैसेजेस, स्वीट डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं, नंबर तो वही है 5499-1294, और साथ है आपका और मेरा यानी कि परी का टिल 11 AM ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। So this one goes out to jo sab log hamare saath jude hue hain, for all the listeners. कुछ गाने ऐसे जो आपको लेकर चलते हैं बैक इन टाइम, कुछ गाने ऐसे जो आपको स्पेशल फील करवाते हैं। So this one goes out for all the couples, कहते हैं ना कि जहां पर words fail, music speaks. So ये गाना आपके दिलों तक हम पहुंचा रहे हैं, शायद आपके दिल के जज्बात भी परफेक्टली बयां कर जाए। And specially goes out for husband ji, yes, Roshan ji, aapke liye, and that's coming from your wife Shweta. Enjoy this one.

0: तड़का
1: और RM2
0: टाइमलेस तड़का
2: वेलफन मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती के साथ और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे. दैट्स योर टाइम लिस्ट तड़का ऑन RM2 रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ. गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
3: Time check exactly 9 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभियोदय। आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। कॉमनवेल्थ खेलों में रिमी फिये ने मॉरिशस को फिर से दिलाया सोने का स्वाद। 33 साल के मॉरिशस के जूडो खिलाड़ी ने 90 किलोग्राम से कम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का दिल जीत लिया। साल

0: 2022 के बर्मिंगम कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले रेमी इस बार और अधिक मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ वापस आए ताकि पोडियम पर सबसे ऊपर की जगह हासिल कर ले। कई वर्षों की कड़ी मेहनत, त्याग और लगन के बाद आखिरकार मॉरिशस के इस खिलाड़ी की मेहनत रंग लाई। वेटलैंड्स का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन करना यही वेटलैंड्स बिल का मुख्य उद्देश्य है, जिसे जल्द ही राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इन इकोसिस्टम्स की सुरक्षा को मजबूत करने के वास्ते इस कानून का लंबे समय से इंतजार था। दलदल, नदियों के मुहाने, मैंग्रोव्स और कुछ तटवर्ती इलाके, ये सभी स्थान प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाढ़ के खतरे के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस्तीफा देना या फिर स्पेशलाइजेशन यानी कि आगे की पढ़ाई का विचार छोड़ना, सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के सामने फिलहाल यही दुविधा खड़ी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेजू ने राष्ट्रीय सभा में इस बात की पुष्टि की है। उनके अनुसार ये पाबंदी जरूरी है क्योंकि लगभग 140 डॉक्टर पहले से ही स्टडी लीव पर है, जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पेरू के नाजका इलाके में पर्यटकों को ले जा रहा एक विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 13 यात्रियों की घटना स्थल पर मौत हो गई। ये विमान नाजका लाइंस की हवाई यात्रा के लिए उड़ान भर रहा था। प्रशासन मृतकों की पहचान करने और परिजनों से संपर्क करने में जुटा है। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में शनिवार शाम को एक रेस्टोरेंट के पास भीषण विस्फोट हुआ। इस दुर्घटना में कम 3 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। यह हादसा मॉस्को के कुंड्रिस्काया स्क्वेयर स्थित एक ऊंची इमारत की पहली मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में हुआ। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। मोसलमो राफ्रे लियोशी तेरूज में 84 साल की 84 की श्रीमती ज्याना कामा नायडू जिन्हें सब लोग वसन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री दुर्गेश वेंकाता साधु के घर मोसलमो राफ्रे लियोशी तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM फैब्रिक्स लेन मोंडालबेया में 82 साल की 82 years old की श्री नरदेव गुदुरी जिन्हें सब लोग सुरेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री वीरन गुदुरी के घर फैब्रिक्स लेन मोंडालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंडालबेया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM रॉयल रोड रिवेजी पोस्ट में 79 साल की 79 years old की श्रीमती दुर्पति बगुरती पैदाशी नाम सीदेनी और जिन्हें सब लोग माउती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति श्री मिरंजन बगुरती के घर रॉयल रोड रिवेजुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगाबो रिवेजुपस की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM इन सभी शुग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Timeless Tadka. RM2. Timeless Tadka.

0: Express तड़का
1: RM2
2: So well friends, that's your timeless तड़का जहां पर आप हमारा साथ दे रहे हैं on RM2 Radio मस्ती सो आपके लिए लेकर आए हैं good music. संडे की सुबह और आज है 2nd of August और बहुत सारे parts में across the world आज celebrate किया जाता है Friendships Day. So इस दिन को हम जरूर डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे सभी listeners के नाम. कभी कभार मिलने के बाद जो रिश्ता बनता है वो अलग होता है, लेकिन what special कि मिलते भी नहीं है फिर भी एक रिश्ता बन जाता है और वही रिश्ता है हमारा हमारे लिसनर्स के साथ. कभी कभार मुलाकात हो जाती है इन स्टूडियोज, लेकिन वैसे तो कनेक्शन बनता है आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस के साथ, कभी कभार आपके फोन कॉल्स के साथ. सो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपको कहेंगे थैंक यू फॉर ऑल द लव और जितना प्यार आपने रेडियो मस्ती को दिया है तो बस इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वंस अगेन फ्रेंडशिप्स डे की बहुत सारी गुड विशेज हमारे सभी लिसनर्स को जो हमारा साथ दे रहे हैं. मैं हूं परी आपके साथ, इट्स योर टाइमलेस तड़का एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट for all the friends जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सभी दोस्तों के नाम, आपके सभी दोस्तों के नाम, and everyone who's special in your life.

0: एक्सप्रेस दरगाह
1: RM2
2: और मूवी का फेमस डायलॉग है कि अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर वो अंत नहीं है। और यहाँ पर हम तो बस यही विशेष लेकर आए हैं कि सबका भला हो, सबका सही हो, लाइफ में आपकी बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो। दिल से हम चाहते हैं कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी फेड आउट ना हो। सो वेल दोस्तों, आप हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम आपके लिए यही चाहते हैं कि लाइफ में जो भी बेस्ट चीज़ें हों वो आपको मिले। और अभी के लिए आप कनेक्टेड हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ, तो कोशिश यही है कि बेस्ट म्यूजिक हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। संडे की मॉर्निंग है जहां पर आपको मौका मिला है कि भाई आज आराम से चाय की चुस्कियों को एंजॉय करते हुए गानों को सुन पाए, वरना तो भागदौड़ में ये मौके कम ही मिलते हैं। सो लेट्स मेक इट स्पेशल, आज के संडे को खास बनाने आ गए हैं आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499 1294। और यहां पर हमारा साथ दे रही हमारी एक लिसनर कहती है दैट मैं हूं मीना और टैगोर से हूं और विश करना चाहती हूं ऑल माय सिस्टर्स, उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेस। सिस्टर है इंदिरा सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज, सो उनके लिए गुड हेल्थ हैप्पीनेस। ये है फ्रॉम अनुराधा, कमला, नंदा, नंदिनी और सभी राम नरेन परिवार, ओबिलक परिवार कास्टल से, जो उनके लिए लेकर आए हैं बहुत सारा प्यार एंड शुभकामनाएं। सो चलिए गाना होगा आपकी डियर सिस्टर के नाम और उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज। ये है हमारी पूरी टीम की ओर से, फ्रॉम लालमाटी वी हैव डेविसन हमारा साथ दे रहे हैं आप। सो वॉर्म वेलकम आपका डेविसन ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती एंड विशिंग यू अ हैप्पी संडे एज वेल। चलिए यहाँ पर अमरीका परशुराम साथ दे रही हैं आप पोर्ट लुइस से, सो थैंक यू सो मच आपकी इन ब्यूटिफुल विशेस के लिए, मींस अ लॉट। और साथ दे रही हैं आप, सो अगला गाना डेडिकेट करेंगे आपके लिए। आई है वीना जगेसा लेकर अपना प्यार फ्रॉम बेलवी मोहल, कहती हैं गाना सभी परिवार सभी दोस्तों के लिए, विशिंग एवरी वन अ हैप्पी हैप्पी संडे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वी हैव अ लॉन्ग मैसेज, बिल्किस हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं गाना हो जाए फॉर हस्बैंड मासिमो ऑफ मिलान, एक्चुअली ऑन वेकेशन है इन मॉरिशस एंड आप है इन गुड लैंड्स। क्या बात है भाई, ऑल द वे फ्रॉम मिलान आया है प्यार यहाँ मॉरिशस में, सो आपके लिए स्पेशल विशेस। लिसनिंग राइट नाउ टू माय फेवरेट रेडियो स्टेशन, इट मींस अ लॉट, रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं आप। एंड वेल अभी के लिए प्यारा सा गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम और बहुत सारी गुड विशेस टू यू बिल्किस फॉर योर हबी डियरेस्ट एंड साथ ही आपके सभी परिवार के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। सो यहाँ पर आप डेडिकेशन करना चाहती हैं और ये होगा फॉर एवरीवन जो गुडलैंड से हमारा साथ दे रहे हैं, सभी परिवार, योर फ्रेंड्स एंसेस्टर है फायजा, नाज, नुरेजा, नीसेस, नेफ्यूज एंड स्पेशली आपकी मामा जो गुडलैंड से हमारा साथ दे रही हैं। सो बहुत सारा प्यार फॉर योर स्वीट फैमिली। झाना जी फ्लाक से आई हैं अपना प्यार लेकर और कहती हैं स्वीट बातों को सुन रही हूं, रेडियो एंजॉय कर रही हूं, डेडिकेटिंग अगला गाना, ये होगा सभी परिवार के नाम, रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, शिवसरण परिवार और फ्लाक जो हमेशा साथ देते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड म्यूजिक आपके लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सभी के लिए इट्स योर टाइमलेस तड़का जहां पर हम आपको लेकर जाते हैं बैक इन टाइम, कुछ गाने ऐसे जो याद दिलाते हैं कुछ यादों को, यानी कि होती है ना जो मेमोरीज गानों के साथ जुड़ी हुई होती है, सो बस उन्हीं मेमोरीज को हम एक बार फिर ताजा कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। टाइमलेस तड़का, मैं हूं परी आपके साथ टिल 11 AM।

बिल्कुल दोस्तों, सुनते रहिए बिकॉज ये है आपका अपना आर एम टू रेडियो मस्ती, गुड म्यूजिक 24/7 आपके लिए लेकर आते हैं एंड बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक एज वेल, नए हो या फिर पुराने, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आपके लिए होता है हमारे इस रेडियो स्टेशन पर। अभी के लिए जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, आपके मूड को सेट करते हैं विद दिस वन उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ें, फिल्म है बर्दाश्त। हमारे सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं, योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस थोड़ी ही देर में 5499-1294 पर।

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: बिल्कुल जी, आपसे रिश्ता तो हम बिल्कुल बनाए रखेंगे और आपका प्यार आपका साथ हमेशा ही खास एंड स्पेशल, इसीलिए स्पेशल है बिकॉज संडे मॉर्निंग और आपने किया है हमारे साथ कनेक्ट ऑन रेडियो मस्ती। सो यहाँ पर कहते हैं दैट आई वुड लाइक टू विश माय अमेजिंग हस्बैंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस हिम विद लोड्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। आप हैं मिस्टर दिवेश जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेस्ट विशेज आपके लिए। दैट्स कमिंग फ्रॉम शिवानी एंड ऑफकोर्स हमारी पूरी टीम आपको विश कर रही है हैप्पी हैप्पी बर्थडे। साथ ही यहाँ पर अगला गाना फोमेधा मनी श्रेया आर्यन नील शीतल विकी रतीना नितिन संगीता मोन्टाई ब्लॉन्च से हमारा साथ दे रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। कहते हैं कि इश्क और दोस्ती मेरे दो जहान है, इश्क मेरी रूह तो दोस्ती मेरा ईमान है। इश्क पर तो फिदा कर दो अपनी सारी जिंदगी, मगर दोस्ती पर तो मेरा इश्क भी कुर्बान है। क्या बात है, आकाश चेतन मनसुख साथ दे रहे हैं आप बॉम्बू से और ऑफकोर्स फ्रेंडशिप्स डे की बहुत सारी गुड विशेस आपको भी। अगला गाना स्पेशली फॉर ऑल मनसुख फैमिली ऑफ बॉम्बू, उनके लिए प्यार और शुभकामनाएं। यहाँ पर अमिता हमारा साथ दे रही हैं ऑल द वे फ्रॉम बुडापेस्ट, डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर हस्बैंड मिटको, बेटी है रोशनी, पापा राम मामा रोशनी, सिस्टर्स स्वस्ति बबीता बेबी पूनम किरण वंदना, सभी के लिए प्यार आपने भेजा है ऑल द वे फ्रॉम बुडापेस्ट। एंड यहाँ पर कुमारन चिनापेन हमारा साथ दे रहे हैं आप और गाना फॉर सविता कृष्णा कविश्नी आंशी है और मामा माया लक्ष्मी, उनके लिए प्यार और शुभकामनाएं ऑन दिस वंडरफुल संडे मॉर्निंग। और यहाँ पर ओजस्वी हमारा साथ दे रही हैं पुद्रदो हैमलेट से, पापा ममा रती सिस्टर्स और आपकी ममा, सभी के लिए आपने भेजा है प्यार और कहती हैं अगला गाना हो जाए स्पेशली उनके नाम। सो बिल्कुल होगा, एक स्वीट सा डेडिकेशन आपकी स्वीट फैमिली के लिए। और यहाँ पर आरती हमारा साथ दे रही हैं आप पांपले मुसे से और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना, ये होगा फॉर योर हस्बैंड शक्ति, आपकी दो जान आशीष एंड आशी और आपकी रेनू है और सुरनाम रहते हैं आप, भेजा है सभी के लिए प्यार, याद किया है सभी को आपने ऑन द संडे मॉर्निंग। सीधा बोलू राम साथ दे रही हैं शातो बनारस से।

0: one. आपके नाम we also have प्रीतम बेटू जी from बीताओ लेकर आए हैं अपनी good wishes. A very good morning आपको भी और आपकी beautiful wife वर्षा, दोनों को wish कर रहे हैं. Happy Sunday गाना होगा आप दोनों के नाम. और यहाँ पर कहते हैं गाना for mom ललिता और ये है from बेटी आशा as well as हबी सुबिराज, बेटी है ऋषिका और सभी परिवार जो भेज रहे हैं प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज. कोमल हमारा साथ दे रही हैं अभी, तो चलिए अगला गाना होगा आपके नाम एंड ऑफकोर्स हमारे अपारू परिवार जो एवरीडे साथ देते हैं, मंडे हो या संडे होता है खास आपकी वजह से. सो हमारे सभी लिसनर्स जो इतने प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, अपना प्यार हम तक पहुंचाते हैं, दैट्स योर टाइमलेस तड़का. आरएफजे रेडियो मस्ती पर जुड़े हुए हैं आप हैप्पी संडे विशेस के साथ. गुड म्यूजिक आपके लिए हमारे इस रेडियो स्टेशन पर. जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं नॉट टू फॉरगेट कनेक्टेड हैं आप, तो मैसेजेस डेडिकेशन हम तक पहुंचा दीजिए 549-9124 पर. मैं परी कर रही हूँ आपका इंतजार.
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: रूप तेरा एंड वेल फ्रेंड्स विद दिस ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. 10 बजे के बाद भी होने वाला है आपके लिए बहुत कुछ खास स्पेशल सेगमेंट्स और गेम भी होने वाले हैं. सो कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभ्योदय, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार प्रिय श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है जिनका वित्तीय वर्ष जनवरी 2026 में समाप्त हुआ है। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने उनके कॉरपोरेट टैक्स रिटर्न और 30 अप्रैल 2026 को हुई तिमाही के एडवांस पेमेंट सिस्टम विवरण दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। इस बात का ऐलान मंगलवार को जारी एक बयान में किया गया। जमा करने की अंतिम तारीख जो पहले शुक्रवार 31 जुलाई तय कर दी गई थी, अब आगे बढ़ा दी गई है। इस्तीफा देना या फिर स्पेशलाइजेशन यानी कि आगे की पढ़ाई का विचार छोड़ना, सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के सामने फिलहाल यही दुविधा खड़ी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने राष्ट्रीय सभा में इस बात की पुष्टि की है। उनके अनुसार ये पाबंदी जरूरी

0: है क्योंकि लगभग 140 डॉक्टर पहले से ही स्टडी लीव पर है, जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। हालांकि रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। वेटलैंड्स का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन करना, यही वेटलैंड्स बिल का मुख्य उद्देश्य है, जिसे जल्द ही राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इन इकोसिस्टम्स की सुरक्षा को मजबूत करने के वास्ते इस कानून का लंबे समय से इंतजार था। दलदल, नदियों के मुहाने, मैंग्रोव्स और कुछ तटवर्ती इलाके, ये सभी स्थान प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाढ़ के खतरे के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। मॉरिशस में 3 स्थानों से पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स के रूप में मान्यता प्राप्त है, गिवियतियाहूज, ब्लू बे मैरिन पार्क और पॉइंट डिस्नी। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के दूसरे चरण में हमास के हथियार डालने के लिए तैयार होने के बाद इसराइल ने शनिवार को फिर से गाजा पर हमला कर दो लोगों को मार डाला, साथ ही दवाओं के गोदाम को भी नष्ट कर दिया। उधर मध्य पूर्व में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका लगातार ईरान को हमले की धमकी दे रहा है तो ईरान भी पलटवार की बात कर रहा है। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी ऊर्जा मूल ढांचे पर नए हमले का आदेश देते हैं तो वे मध्य पूर्व के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। प्रयाग लेन शामुनी में 70 साल के 70 years old के श्री लाल देव अनंत, जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ है आज सपहर के तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती राजवंती अनंत के घर प्रयाग लेन शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। एसएसओ इलू कौंजाब में 28 साल के श्री शुभम उकिल, जिन्हें सब लोग यश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ है आज सपहर के तीन बजे उनकी माँ श्रीमती पूनम उकिल के घर एसएसओ इलू कौंजाब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंजाब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Timeless Tadka. RM2. Timeless Tadka.

0: Ramirez, Tarka.
1: RM2.
2: सो हेलो मेरे दिल के चैन, उसके बाद लौट कर आए हैं आपके मैसेजेस डेडिकेशंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, संडे का ये दिन जहाँ पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई डू होप संडे की जो शुरुआत है एकदम मस्त, एकदम म्यूजिकल हुई है। और आज का दिन है टू रिलैक्स, टू चिलैक्स, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालें, थोड़ा सा मी टाइम जहाँ पर आप आराम कर सकें, कुछ क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड कर सकें, विथ योर लव्ड वंस स्पेंड कर सकें। और ऐसा वक्त जो शायद आप मुड़कर देखे तो लगे कि हाँ कुछ जिंदगी के हसीन पल हमने भी चुराए हैं। सो मेक दिस संडे अ स्पेशल वन। आज की तारीख 2nd of August 2026, ये लौट कर तो नहीं आने वाली है, सो मेक इट स्पेशल। और अभी के लिए आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आ गए हैं ऑन 5499-1294। सो यहाँ पर सीतोहल परिवार हमारा साथ दे रहे हैं। सो अगला गाना आपके नाम, कहते हैं कि काम आज काफी ज्यादा है, बढ़िया गानों के साथ

एंजॉय कर रही हूँ और बस आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और गानों को सुनते सुनते अपना काम काज निपटा रही हूँ। ये है फ्रॉम रोशनी और यही तो हम कह रहे हैं कि संडे का दिन भी आप खुद के लिए नहीं निकाल रही है, यू आर वर्किंग वर्किंग एंड ओनली वर्किंग। घर का काम भी ज़रूरी है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन आराम से सब कुछ हो सकता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। थोड़े से आराम के पल आप भी चुरा लीजिए आज और गाने आपके लिए हम चलाते जाएंगे। सो यहाँ पर जो अगला गाना है इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड। मौसम सुहाना है इन बेल्जियम और सुबह सवेरे 18 डिग्रीज एंड सनी सनी वेदर, दैट्स कमिंग फ्रॉम प्रकाशवती जी सात समंदर पार बेल्जियम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम एंड सेंडिंग लोड्स ऑफ गुड विशेज एंड बहुत सारा प्यार राइट हियर फ्रॉम मॉरिशस। यहाँ पर मनीष साथ दे रहे हैं अमर राजा बानी जिससे सभी खूबलाल परिवार रिवर जोगांपा से हमारे म्यूजिकल हम सफर बने हैं। गाना होगा आप सभी के नाम एंड डेडिकेटिंग एक रोमांटिक गाना, ये है फॉर हस्बैंड राकेश भागीरथी, इनका आज बर्थडे है एंड उनके लिए विशेष ये है फ्रॉम वाइफ मनीषा और सभी उनके परिवार जो उनके लिए लेकर आए हैं स्पेशल स्पेशल विशेष ऑन हिज स्पेशल डे। साथ ही यहाँ पर कहते हैं मैं हूँ साध्विक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, आई लाइक योर नेम, दैट्स रियली नाइस नेम और थैंक यू जी साथ देने के लिए शुक्रिया। और अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम, गुड विशेस आप पहुँचाना चाहते हैं सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ। सो गाना होगा आपके नाम एंड हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चित्रा जी और कहती हैं यहाँ वाकवा से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ एंड एंजॉइंग द सॉन्ग्स, घर का काम काज करते हुए एंजॉइंग द सॉन्ग्स। सो थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, आपने अपनी दिनचर्या में हमें शामिल किया है यानी कि रेडियो मस्ती को शामिल किया है। सो बस कोशिश रहेगी कि गुड म्यूजिक के साथ आपको एंटरटेन करते रहे। अभी के लिए म्यूजिक सुनाते सुनाते वक्त हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा और मेरे बाद आ रही है पूनम लेकर योर बॉली ब्रांच जहां पर वो परोसने वाली है आपको गुड म्यूजिक और कुछ वंडरफुल सॉन्ग्स आपकी इस आफ्टरनून को खास और स्पेशल बनाने। सो मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज। सो तब तक ये छोड़े जा रहे हैं आपको विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती। हैप्पी संडे एंड हैव अ ग्रेट टाइम।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check सुबह के 11 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी द्योय से. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ. कॉमनवेल्थ खेलों में रेमी फेये ने मॉरिशस को फिर से दिलाया सोने का स्वाद. जी हाँ, 33 साल के मॉरिशस के जूडो खिलाड़ी ने 90 kg से कम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का दिल जीत लिया. साल 2022 के बर्मिंगहम कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले रेमी फेये इस बार और अधिक मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ वापस आए ताकि पोडियम में सबसे ऊपर की जगह हासिल कर सके. कई वर्षों की कड़ी मेहनत, त्याग और लगन के बाद आखिरकार मॉरिशस के इस खिलाड़ी की मेहनत रंग लाई. उनकी इस जीत की बदौलत कॉमनवेल्थ खेलों में 28 साल के बाद मॉरिशस का झंडा फिर से ऊपर लहराया है. इससे पहले सन 1998 में क्वालालंपुर में मुक्केबाज रिशा सनी ने स्वर्ण पदक जीता था. ये एक ऐतिहासिक जीत, बेहद भावुक कर देने वाला पल और रेमी फेये उनके परिवार और पूरे मॉरिशस देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है. उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है जिनका वित्तीय वर्ष जनवरी 2026 में समाप्त हुआ. मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने उनके कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई तिमाही के एडवांस पेमेंट सिस्टम विवरण दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है. इस बात का ऐलान मंगलवार को जारी एक बयान में किया गया. जमा करने की अंतिम तारीख जो पहले शुक्रवार 31 जुलाई तय की गई थी अब उसे आगे बढ़ा दी गई है. इस्तीफा देना या फिर स्पेशलाइजेशन यानी कि आगे की पढ़ाई का विचार छोड़ना सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के सामने फिलहाल यही दुविधा खड़ी कर दी गई है. स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने राष्ट्रीय सभा में इस बात की पुष्टि की. उनके अनुसार

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:33 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो लंच की तैयारी कर रहे होंगे और प्लान कर रहे होंगे, भाई अभी तो हम उठे हैं, अब क्या क्या करना है। तो अभी बहुत कुछ करना है, इसीलिए हम कहते हैं हवा से बातें तो कर ले। जो अभी आपने गाना सुना सुखविंदर की आवाज़ में, बट ये जो ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, बिल्कुल आराम से स्मूथ चलाइए, घर वापस आना है, बहुत सारे काम करने हैं, बस हवा में उनसे बातें करनी है जिनको आज कुछ प्लान करने हैं नेक्स्ट वीक के लिए। पूरी नेक्स्ट वीक हो सकता है या हो सकता है पूरे मंथ, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, साथ में उनको थोड़ा सा काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। तो हम तो आप सबको यही कहेंगे जो आज घर से या तो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई मीटिंग ऐसी प्लान कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनको कल चाहिए होगा, तो हम तो इतना कहेंगे बस मस्ती से गानों के साथ जुड़े रहिए। रेडियो मस्ती आपके सारे मूड्स के लिए गाने लाता है, सिर्फ एक मूड नहीं बनाते हैं हम लोग, कहते हैं कि जो जो जहाँ जहाँ है हमें क्या पता कौन कौन क्या कर रहा है, पर हम कहते हैं कि आपका थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा जो मोटिवेशन है थोड़ा सा लो हो जाता है क्योंकि वीकेंड है, तो इन्जॉय कीजिए गानों को और साथ में अपनी प्लानिंग कीजिए, घर के जो काम कर रहे हैं उसको बस मस्ती से मुंह पे एक स्माइल रख के करते रहिए, इन्जॉय कीजिए। ये गाना बहुत ही प्यारा है और भी बातें करेंगे, 3 घंटे बड़े हैं हमारे पास।
0: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती
1: 11:42 हो चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम पूरे मॉरिशस को ढेर सारी बधाई देंगे

0: कल हमारे देश ने गोल्ड मेडल जीतकर हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस जीत की जो खिलाड़ी है वो कहते हैं कि जो खिलाड़ी हैं इन्होंने इतना अच्छा खेला और पूरा मॉरिशस उन पे गर्व कर रहा है, जो कि अभी इस समय कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहे हैं। वो जो बच्चे जो गए हुए हैं जूडो में या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, उनको हम यही कहेंगे आर एम टू रेडियो मस्ती हमारे आप सबके साथ है और पूरे मॉरिशस के भी आपके साथ है। और मॉरिशस बस इतना ही कहता है, आराम से आओ, बहुत सारी ढेरों दुआएं और हम सब आपका इंतजार करेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। और जिनके लिए अभी आज भी जिन्होंने खेलना है उनके लिए हम ये गाना चलाने जा रहे हैं। इंजॉय कीजिए आप सब भी और थोड़ा सा प्राउड फील कीजिए।
1: बॉडी ब्रंच आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी उदय से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। वेटलैंड्स का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन करना, यही वेटलैंड्स बिल का मुख्य उद्देश्य है, जिसे जल्द ही राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इन इकोसिस्टम्स की सुरक्षा को मजबूत करने के वास्ते इस कानून का लंबे समय से इंतजार था। दलदल, नदियों के मुहाने, मैंग्रोव्स और कुछ तटवर्ती इलाके, ये सभी स्थान प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाढ़ के खतरे के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। मॉरिशस में 3 ऐसे स्थान हैं जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। रिविया टेर रूज, ब्लू बे मैरिन पार्क और पॉइंट डिस्नी शामिल हैं। उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है जिनका वित्तीय वर्ष जनवरी 2026 में समाप्त हुआ। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने उनके कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई तिमाही के एडवांस पेमेंट सिस्टम विवरण दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इस बात का ऐलान मंगलवार को जारी एक बयान में किया गया। जमा करने की अंतिम तारीख जो पहले शुक्रवार 31 जुलाई तय की गई थी, अब उसे आगे बढ़ा दी गई है। इस्तीफा देना या फिर स्पेशलाइजेशन यानी कि आगे की पढ़ाई का विचार छोड़ना, सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के सामने फिलहाल यही दुविधा खड़ी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने राष्ट्रीय सभा में इस बात की पुष्टि की है। उनके अनुसार ये पाबंदी जरूरी है क्योंकि लगभग 140 डॉक्टर पहले से ही स्टडी लीव पर है, जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि रूस के मध्य मॉस्को में शनिवार शाम को एक रेस्टोरेंट के पास धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 21 लोग घायल हो गए। ये धमाका तब हुआ जब एक महिला देसी बम लेकर वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि ये धमाका स्थानीय समयानुसार रात के 8 बजे से ठीक पहले कुंद्रिस्काया स्क्वेयर के एक इटालियन रेस्टोरेंट के पास

0: वाह, तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। नंबर 48 मौलाना अब्दुल रशीद नवाब स्ट्रीट प्लेनवेयत में 82 साल की 82 years old की मिसिज बीबी निसान अब्दुल, मिसिज बीबी निसान अब्दुल पैदाइश नाम कदर वंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान नंबर 48 मौलाना अब्दुल रशीद नवाब स्ट्रीट प्लेनवेयत से निकालकर दफनाने के लिए गश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। एसएसओ इलो कंजाब में 28 साल के 28 ईयर्स ओल्ड के श्री शुभम ओकिल जिन्हें सब लोग यश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनकी मां श्रीमती पूनम ओकिल के घर एसएसओ इलो कौंजाब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंजाब की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 3। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:27 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। मुझे पता है आप लोगों ने लंच भी कर लिया हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे होगे, पर कई जगह होता है कि वो एक टाइम लेते हैं, यानी कि 12:30, 12:30, 1:00, क्योंकि उनका टाइमिंग होता है कि भाई एक फैमिली मेम्बर ने खा लिया, फिर दूसरे लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेसेस होते हैं या कहीं पर वर्क कोई कर रहा होता है, तो आधे जो वर्कर्स हैं, स्टाफ है, पहले खा लेते हैं, उसके बाद कुछ लोग बाद में खाते हैं। तो जो भी खा रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, पर स्माइल करते हुए खाइएगा, तो क्योंकि खाना तभी लगता है, तभी पचता है जब आपके चेहरे पर मुस्कान होती है। कई बार बहुत सादा सा खाना बना होता है, उसको भी इंजॉय करके खाइए, क्यों ना हो, क्योंकि खाना तो खाना है। चलिए जी, खानों के साथ में बातें हो जाती हैं प्यारी प्यारी सी, तब जब आपके उसमें जुड़ जाते हैं थोड़े से मैसेजेस। और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं यलेश जी सूरी नाम से, और उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी फोटो भेजी है जिसके अंदर

0: गातोपीमा रखे हैं, उसमें चाय रखी हुई है, और उन्होंने कहा पूनम जी खा लो, और आपने ऐसे भेजी और मैं खा लेती हूँ, मेरा भी पेट भर गया, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, ऐसे भी कोई ख्याल कर लेता है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आकाश बोलाकी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अपनी वाइफ से बस इतना कहना चाहते हैं कि लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर हो तुम, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। थैंक यू नलिनी, और मैं तो यही कहूँगी नलिनी जी, आप बहुत ही लकी हैं, इतना प्यार करने वाला पति मिला है। हमेशा इंजॉय कीजिए, ऐसे ही ब्यूटीफुल स्माइल करते रहे, और एक प्यारा सा जोड़ा बने रहे, हमारे हमें भी अच्छा लगेगा। सविता जी साथ दे रही हैं और सभी को कह रही हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अनीता जी, संगीता, सरिता, रंजीता, उषा, आशा, बेबी अंजनी, जयश्री एंड कविता, आप सब हो मेरे लिए बहनों जैसे, पर मैं सच बोलूं तो तुमको पता ही नहीं लगता कि तुम दोस्त हो या बहनें, मैं तो कहती हूं तुम हमेशा मेरे आसपास रहो। सविता जी थैंक यू इतना प्यार और इतनी मोहब्बत देने के लिए अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को और अपने परिवार को, बस ऐसे साथ देते रहिए। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। प्रकाशवंती जी बेल्जियम से जुड़ी हुई हैं साथ और इन्जॉय कर रही हैं। ज्योति जी आशनी, रेखा, सुरेखा, AMD एंड मधु फैमिली के लिए विश कर रही हैं और उन्हें बोल रही है, तभी तो मैं ये नाम देती हूँ क्योंकि ये जो मेरे दोस्त हैं ये मेरी बहनें भी हैं और मुझे बहुत प्यार भी करती हैं। क्या बात है, यू आर ऑल्सो वेरी लकी डियर। अमिता मोहाबी साथ दे रही हैं बोना कैर से और सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश कर रही हैं और सभी फैमिली को कह रही हैं, अरे अगर आज कोई काम नहीं है ना तो संडे को भी जो ये रेस्ट टाइम है ये भी बहुत बड़ा काम है, तो संडे को इंजॉय करो, कहीं नहीं जाने का दिल कर रहा, कहीं मत जाओ, बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। क्या बात है भाई, सारे ऐसे हो गए हैं जैसे कि सारे हमारे जैसे RJ बन रहे हैं, बस ऐसे ही हम भी आपको यही कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, दिल को हल्का रखो, दिन को हल्का रखो। जब हमारा दिल हल्का होता है ना, दिन भी बहुत हल्का हल्का हो जाता है, और जो हमारा नेक्स्ट वीक होता है ना, जो हमारा बोझ बनने वाला होता है, वो ऐसे ही आराम से रिलैक्स हो जाता है। तो इंजॉय कीजिए अपने गाने और साथ देते रहिए आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Poly Brunch RM2 Radio Masti. Poly Brunch RM2 Radio Masti.
1: आप सुन रहे थे बपी लहरी और श्रिया घोषाल की आवाज़ में उलाला, क्या सॉन्ग था और क्या मूवी बनी थी पुराने ज़माने को लेके, और पुराने एक्टर्स की जो एक्टिंग होती है वो एक कमाल की होती है, और जिस तरीके से सभी ने इस पे काम किया था, जिस तरीके से इसमें उनकी जो कॉस्ट्यूम पे ध्यान दिया गया था, उनकी कहते हैं कि डांस की स्टाइल, चाहे जितेंद्र साहब का टाइम हो और उस टाइम के जितने भी साउथ इंडियन स्टाइल में जो उस समय कपड़े डाले जाते, हर चीज़ पर, छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दिया गया और बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक मूवी बनकर आई थी। बहुत कुछ सीखा उस जमाने से लेके आज तक हम लोग सीखते आ रहे हैं, क्योंकि यही तो लेजेंड्स हैं। इनके ऊपर जब ये मूवीज इस तरीके से बनती है तो एहसास होता है कितना कुछ लोगों ने काम किए हैं और किस तरीके से जिंदगी ब्यूटीफुल तरीके से बनाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई, जो अगर हम कह लें कि रेडियो हो या टीवी हो, हर तरफ से ये सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहां पर अगर आप बात करें कि 1960s के टाइम में लोगों को इतना नहीं चीजें पता होता थी, पर आज की डेट में इतना कुछ बॉलीवुड ने हमें दिया, चाहे उसमें सॉन्ग्स कह लीजिए, मूवीज़ कह लीजिए, उसके बाद सीरियल्स आने लगे, और आज देखिए हर घर घर में टीवी भी है, फ़ोन्स भी हैं, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है, पर हम फिर भी उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो हमारे दिल को टच कर जाती है, छू जाती है। तो ये तो गाने बहुत ही फैंटास्टिक हो गए, और आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, हम फिर से रीड करेंगे, पर थोड़ी देर बाद आप जो सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। बट हम आपको ये कहेंगे कि जहाँ पर हो, घर पर हो, थोड़ा सा नाचिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, और अगर आपने खाना खा लिया है तो थोड़ा सा वॉक भी कर लीजिए, 5-6 मिनट 10 मिनट। अगर आगे पीछे जाएंगे, अपने गार्डन में जाएंगे, या थोड़ी सी स्टेयर्स से अप एंड डाउन कीजिए, बट स्टेयर्स पे चढ़ने आधे घंटे बाद जाइएगा खाना खाने के बाद, पर अगर थोड़ा सा वॉक भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा, ये धूप बहुत स्ट्रांग है, पर कभी कभी तो बिल्कुल धूप नहीं आती है, तो थोड़ा सा धूप में बैठिए, 5-10 मिनट रेडियो को सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए। RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ है, 24 आवर्स मैं हूँ आपके साथ इस समय, पूनम।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में हम सभी लोगों का स्वागत है। दशकों तक मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विशेष पहुंच, अनुकूल कर व्यवस्था और कम लागत वाले श्रम बल पर आधारित रही, लेकिन अब ये पारंपरिक लाभ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए विजन 2050 परियोजना के तहत दो ऐसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो अभी तक मॉरिशस में अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। इनमें ब्लू इकोनॉमी, जीवन विज्ञान तथा औषधि उद्योग शामिल हैं। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का आकार 15.2 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने कहा कि जिगोगोशा मिलिट्री बेस एंड ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी बिल आने वाले हफ्तों में ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के बदलाव का मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच शागुस मुद्दे पर चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गाविन ग्लोवर कल अफ्रीकन फ्लॉक में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक संगोष्ठी के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे। अपने संबोधन में अटोर्नी जनरल ने शागुस मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि शागुस मूल के मॉरिशनों की गरिमा को इस ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठन एन एंजल की पहल पर शनिवार को आयोजित पुनर्वीकरण दिवस में स्वयं सेवकों, विद्यार्थियों, परिवारों और जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण खोज भी सामने आई। इसमें मिका नामक एक दुर्लभ स्थानिक वृक्ष प्रजाति की पहचान की गई जो मॉरिशस की जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और देश की प्राकृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों को भी रेखांकित करती है। और उर्दू स्पीकिंग यूनियन के नए वर्ष भर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली तथा महाविद्यालयी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार शाम फाकुआ के सेंसकोंस्ताते थिएटर में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न लेखन और सार्वजनिक भाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनकी प्रतिबद्धता, प्रतिभा और लगन के लिए पुरस्कृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश में बात करते हैं भारत के बारे में। भारत में नीट 2026 के बाद मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया अब एक नए चरण में प्रवेश कर

0: रही है। मेडिकल काउंसिल कमेटी ने घोषणा की है कि काउंसिलिंग के पहले चरण के लिए पंजीकरण आगामी 5 अगस्त को शुरू होगा। उम्मीदवार अपनी राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर मेडिकल विश्वविद्यालयों का चयन कर सकेंगे। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। जुवांस से दिपिने में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंद नमोल जिन्हें सनातन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे राज नमोल के घर दिपिने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। रुद्बा सिंह कैट्रोबोन में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहनलाल बंधु जिन्हें देवानंद के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर बासा कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल मां की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा। धीरे धीरे

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:17 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ यानी कि बॉली ब्रंच के साथ। मुझे पता है लंच हो गया बट कई लोग इस समय कहीं ना कहीं स्पेशल किसी से मिलने जा रहे होंगे, कुछ प्लानिंग किया होगा। तो हम कहते हैं आपको कि स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हैं तो बिल्कुल एम्प्टी हैंड मत जाइएगा। चॉकलेट्स लेके जा सकते हैं, एक छोटा सा सिंपल फ्लावर जेस्चर के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन मेमोरी भी तो बनती है ना, क्योंकि जब आप उन्हें देंगे उनको एहसास होगा कि आप उनको फूलों के जैसे रखना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में फूलों की तरह से शुरुआत करना चाहते हैं। और हाँ, गर्ल सरप्राइज देना है का लाइसेंस सिर्फ बॉयज़ के पास नहीं है, आप लोगों के पास भी है। आप बिल्कुल एक फूल लेके जा सकते हैं, चॉकलेट लेके जाइए। अगर आपका दिल करता है तो बड़ा सा कहते हैं ना गुलदस्ता टाइप बनवा के लेके जाइए, डिपेंड्स ऑन यू, बट हम आपको इतना ही कहेंगे फूल जरूर लेके जाइएगा। फूलों से बहुत एक तो खुशबू आती है, ज़िंदगी बहुत सुंदर लगती है, प्यारी लगती है, नरम सी लगती है। और कहते हैं हम आपको जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैसेजेस के थ्रू, अगर आपको भी कोई किसी को मैसेज भेजना है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499-1294 पर। तब तक इंजॉय कीजिए अपना गाना।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: स्टोरी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:26 हो चुके हैं और हमारे पास 2-3 मैसेजेस आए कि भाई हम घर पर हैं और बच्चों को कुछ खिलाना चाह रहे हैं, कुछ स्पेशल बता दो कि क्या बना सकते हैं, क्या खिला सकते हैं जिससे बच्चों का दिल थोड़ा अच्छा लगे और कहते हैं ना कि कुछ स्पेशल सा उनको मिल जाए। तो हम आपको इतना ही कहेंगे कि आज संडे का जो स्नैक्स का टाइम होता है ना, उसमें आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 2 कप उबले हुए स्वीट कॉर्न्स लेने हैं। आपको जैसे पैकेट्स में आते हैं उसे थोड़ा सा 5-10 मिनट बॉयल कर दो, डिफ्रॉस्ट करके बॉयल करोगे तो उसके बाद वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सारा जो पानी है सारा निकाल दो, मतलब उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं बचना चाहिए। फिर उसको ट्रांसफ़र करो बोल में, उसमें 1/2 स्पून कोई भी बटर जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी ब्रांड का जो भी आपको पसंद है या बच्चों को पसंद है वो वाला बटर डालो। उसमें आपको सॉल्ट जो डालना है 2 चुटकी डालना है, पर वो आपको नॉर्मल सॉल्ट नहीं डालना चाहिए, मोटा वाला भी नहीं डालना है और बारीक वाला भी डालना है। अगर आपको पिंक सॉल्ट मिलता है या आपको हिमालय सॉल्ट मिलता है तो बस वो डाल दीजिए 2 पिंच, और उसके अंदर हल्की सी ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, उसमें 2-3 बूंदे नींबू के रस की डाल सकते हैं। उसमें हल्का सा, मार्केट से आपको पता ही है चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाट मसाला ला सकते हैं, उसमें हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए। उसमें बारीक बारीक सा थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिलाओजे करें। उसमें अनियन नहीं डालना, गार्लिक नहीं डालना है, जिंजर नहीं डालना है। कई बार क्या होता है कि हमने बहुत टाइम से बनाया भी नहीं होता है घर पे, तो जब हम रेडियो पे सुनते हैं तो दिल कर जाता है चलो कुछ खा लेते हैं। तो बस 5 मिनट उसे गर्मा गर्म उसे घुमाते रहिए। जब वो घूमेगा तो आपको क्या करना है, हल्का सा फिर से अगर वो ठंडे लग रहे हैं कि आपको घुमाते हुए वो ठंडे हो गए तो हल्का सा उसको माइक्रोवेव में रख दीजिए 30 सेकेंड्स के लिए। और ये बटर जो लेमन डालते हैं और उसकी वजह से ना वो जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं, और जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में पानी आएगा, जैसे मेरे मुंह में पानी आने लग गया। मैं क्या कर सकती हूँ, पर क्या करें। अगर आपको बीच जा रहे हैं तो बीच पर भी आप ये इसे डब्बे में पैक करके लेके जा सकते हैं। इतने टेस्टी लगते हैं, इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है, बच्चों को तो पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा। जो भी संडे को इंजॉय कर रहे हैं, सैटरडे संडे हमेशा बनाया करो, बहुत ही हेल्दी है, मतलब हर चीज का इसके अंदर आपको फ्लेवर मिल जाता है। और अगर उसमें हो सके तो 1 चुटकी हल्की सी चीनी भी डाल सकते हैं, सिर्फ चुटकी, चम्मच नहीं डालना है, सिर्फ चुटकी डालना है। अगर आपको चाट मसाला नहीं पसंद है तो आप स्किप कर

0: सकते हैं, थोड़ा सा बटर डालो, हल्की सी लाल मिर्च डालो, ब्लैक पेपर डालो और नींबू का रस डालो, देखो क्या मजा आएगा। एंजॉय कीजिए गानों के साथ। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: ये नहीं होता कि सिर्फ मैदान में ही फतेह होती है, हमेशा जहाँ पे आप घर में जब रह रहे हो या ऑफिस में हो वहाँ पे भी आपको चाहिए थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कोई ये इतना कह दे कि अरे तुम बहुत अच्छा करती हो या करते हो और आगे देखना लाइफ में तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। तो ये जब चीज़ें आती है सुनने को मिलती हैं तो इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ पाता है। कई बार हमारे माँ बाप जो होते हैं या भाई बहन होते हैं एक दूसरे को बस ऐसे दूर दूर से कह देते हैं, पर हम तो इतना ही कहेंगे अपने बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सा उन्हें ये ज़रूर बोलिए कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बच्चों को ये चीज़ें सुनने को दिल करता है और साथ में उन्हें एहसास भी होता है कि हमारे माँ बाप हम पे सपोर्ट कर रहे हैं और हम पे पूरा विश्वास करते हैं। जब बच्चों पर विश्वास होता है माँ बाप को तो फिर बस क्या बात है, और घर तो अच्छा हो ही जाता है, लाइफ भी अच्छी हो जाती है और उनका फ्यूचर भी सिक्योर्ड हो जाता है। तो चलिए भाई, दो तीन मैसेजेस के साथ में हम लोग भी विदा लेने तक पहुँच चुके हैं। इस समय 1:42 हो चुके हैं। लवली संडे कह रहे हैं डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुविशा, आपादू फैमिली, और कह रहे हैं गाने बहुत मस्त चल रहे थे, हमने बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच सर, आप भी इन्जॉय करते रहे, हम तो आपके लिए यहाँ पर इसीलिए बैठे होते हैं कि आपके मूड के हिसाब से कि कहीं थोड़ी सी सुस्ती ना आ जाए और कहीं ऐसा ना लगे कि संडे भाई ऐसे बोर हो गया। तो बोर मत होइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, इन्जॉय कीजिए गानों को, नाचते गाते निकल जाएगा समय और फिर कल सुबह मॉर्निंग आ जाएगा मंडे का, कोई बात नहीं। जना जी अपनी फैमिली के लिए बस साथ जुड़ी हुई है और एक इतना ही कहना चाहती है, ए गर्ल्स मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, क्या करूँ मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती हूँ, तुम तो मुझे कोई मैसेज करती नहीं हो पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी देख लिए मैं रेडियो पर तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या बात है भाई, ऐसे ही प्यार होना चाहिए, माएँ हो, मासियाँ हो, बुआ हो, चाचियाँ हो, अगर इतना सा मैसेज आ जाए तो और क्या चाहिए। इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं विमिता, जोयराम, यहाँ पे नहीं, जिनका है बर्थडे उनका नाम है विमिता जोयराम, बट उनको बहुत ही प्यार से सब लोग उन्हें पैम बुलाते हैं, पर जिन्होंने ये मैसेज भेजा उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, तो क्यों नहीं बताया, एटलीस्ट हम बता तो सकते थे कि भाई किसकी तरफ से किसका मैसेज है, पर हम आपके फीलिंग्स को समझते हैं और हम भी आपको कहेंगे मिस पैम को कि आप हैप्पी बर्थडे टू यू, किसी ने तो मैसेज किया है आपके लिए और बस इतना ही चाहते हैं कि हमेशा आप खुश रहें, इन्जॉय कीजिए। चॉकलेट्स आपके लिए आ रही हैं, फ्लावर्स आपके लिए आ रहे हैं, अगर कुछ ना आए तो बस आप किचन में जाइएगा, अपना कहते हैं ना एक बहुत सुंदर सा वहाँ पे एक ठंडा ठंडा फ्रिज होता है उसको खुलिएगा, वहाँ से एक पीस चॉकलेट का लीजिएगा। जिन्होंने मैसेज किया उसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट उनके नाम से ही ऐसे खा लीजिएगा, देखिए बर्थडे बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। जीना जी पारिस से जुड़ी हुई हैं, साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं, थैंक यू सो मच। सिमला जी साथ हैं हमारे और अपने पूरे परिवार के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं, बिल्कुल चलाने वाले हैं। सुया बिहारी जी साथ जुड़ी हुई हैं।

0: और अपने दामाद रोशान को और बेटी श्वेता को विश कर रही हैं। वो इस समय किसी शादी में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी की नज़र ना लगे, मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही प्यारे हो, इंजॉय करो गाने, और ये गाने सब आप सब के लिए।
1: Body Brunch RM2 Radio Masti।

चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, खुशियाँ बड़ी नहीं होती, उन्हें महसूस करने का अंदाज बड़ा होता है। अपने संडे को मुस्कुरा कर जिए, म्यूजिक और अपने लोगों के साथ पूरा कीजिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, मेरे बाद आपको साथ मिलेगा हंसनी का प्लग एंड प्ले में, इंजॉय कीजिएगा। मेरे से पहले आपके साथ थी परी और उससे पहले थी रिया, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगी, उन्होंने बहुत ही अच्छा मूड सबका बना दिया। इंजॉय कीजिए ये गाने।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस के खेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। रिशोसनी के 28 वर्ष बाद मॉरिशस ने राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार फिर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ग्लासगो में आयोजित प्रतियोगिता में 90 किलोग्राम से कम वर्ग के जूडो खिलाड़ी रेमी फेये ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उनकी ये ऐतिहासिक जीत मॉरिशस के खेल इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अब बात पुनः उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले सेकेंड हैंड कपड़ों की करती हैं। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच इन कपड़ों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए तमागे में हाल ही में ओपन हाउस नामक एक बुटीक शुरू किया गया, जहां सेकेंड हैंड कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर सरकारी संगठन एन एंजल की पहल पर शनिवार को आयोजित पुनर्वनीकरण दिवस में स्वयंसेवकों, विद्यार्थियों, परिवारों और जूनियर चेंबर इंटरनेशनल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण खोज भी सामने आई। इसमें मेकाक नामक एक दुर्लभ स्थानिक वृक्ष प्रजाति की पहचान की गई, जो मॉरिशस की जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और देश की प्राकृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों को भी रेखांकित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें हम रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को के एक रेस्टोरों में हुए विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 21 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार ये विस्फोट एक महिला के पास मौजूद एक घर में बनाए गए बम के कारण हुआ। पुलिस के मुताबिक ये घटना मॉस्को के कुंड्रिस्काया स्थित स्टॉकिन काल के साथ प्रसिद्ध स्काईस्क्रेपर्स में से एक के भूतल पर स्थित बाजी रोसी रेस्टोरेंट के पास हुई। मामले की जांच अभी जारी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। साथ रहिए, सुन पाएंगे श्रोक समाचार। नवाब स्ट्रीट प्लेनवेयर में नवाब स्ट्रीट मौलाना अब्दुल रशीद नवाब स्ट्रीट प्लेनवेयर में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की बीबी निसान अब्दुल पैदाशम कादर इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज 2:30 बजे इनके घर मौलाना अब्दुल रशीद नवाब स्ट्रीट प्लेनवेयर से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। बनवेन रोड कोचिमलितिया में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की बीबी रकीबा गुबर्दन बीबी

0: रकीबा गुबर्धन, पैदाश्रम भगन और जिन्हें रकीबा के नाम से लोग ज्यादा जानती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा 1:30 बजे इनके दामाद मस्जब मोहम्मद के मकान कौचे मिलिटियस से उठाया गया और दफनाने के लिए अमोगी का कब्रिस्तान ले जाया गया। फिनरल टुडे एट 1:30 PM कानो कानन स्ट्रीट जमालक वाकुआ में, कानो कानिन स्ट्रीट जमालक वाकुआ में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद सिद्दीक कुदाबुकस, जनाब मोहम्मद सिद्दीक कुदाबुकस जिन्हें सिद्दीक के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज शाम 3 बजे इनके मकान वाकुआ से उठाकर सबसे पहले नवाज़े जनाजा के लिए मस्जिद अंजुमन लकावेन वाकुआ ली जाएगी, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Plug and play. RM2. Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: दो बजकर 10 मिनट ऑन रेडियो मस्ती, सभी का वार्म वेलकम इन प्लग एंड प्ले. स्पेशल थैंक यू टू यू पूनम शिवसेया फॉर आज का बॉली ब्रंच, जहां पर हम वीकेंड को एंजॉय करते हुए बस साथ निभा रहे हैं. और रेडियो मस्ती वहां पर चली आई है हंसनी आप लोगों का साथ निभाने के लिए. बिग हेलो टू एवरीवन, wishing you all a great Sunday time, a great weekend, happy afternoon to everyone. Really hope ki sab acha hai, sab theek hai. Aur achhe se shuruaat ho gayi hai, kal se ek naya mahina shuru ho gaya aur aaj hum celebrate kar rahe hain the 2nd of August. So kaise hain aap log? Really hope ki sab kuch acha hi hai. Aur agar nahi hai to अभी ठीक बनाएंगे. म्यूजिकल मोड को सेट हम करने वाले हैं वो द लाजवाब कलेक्शन, जो बिल्कुल रेडी है टू एंटरटेन यू. सो जहां पर भी साथ जारी है, इट्स अ वार्म वेलकम. यू आर ड्राइविंग राइट नाउ, मे बी कहीं भी आप जा रहे हो, सो आराम से गाड़ी चलाएं, रेच सेफली, एंजॉय योर फैमिली टाइम, एंजॉय योर ड्राइव. और घर पर होकर मौसम को देख के आपने सोचा है आज घर पर रहेंगे, आज तो कभी धूप तो कभी बारिश शुरू हो गई, तो ऐसे मौसम में बेटर स्टे एट होम. हाँ, रिलैक्स, कुछ आराम फरमाएंगे, कुछ म्यूजिक को एंजॉय करेंगे, तो ये भी आपने एकदम ठीक सोचा है. एनी हाउ, यहाँ पर कनेक्शन तो बन ही जाता है आप लोगों के साथ विद रेडियो मस्ती. वी आर हियर टू हैव योर मैसेजेस एज वेल. अच्छा लगता है टू गेट टू नो अबाउट द हैपनिंग्स, क्या कुछ हो रहा है, एंड टू शेयर योर फीलिंग्स, योर मैसेजेस. यहाँ पर हंसनी विल बी वेटिंग, आपका इंतजार रहेगा ऑन 549-1294, जहाँ पर आपके मैसेजेस आएंगे. सो जहाँ पर भी रेडियो आप सुन रहे हो, इट्स अ वार्म वेलकम टू एवरीवन.
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
3: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
1: RM2
0: Radio Musty.
1: Feel

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Good afternoon, everyone. I check your time. It's 3 p.m. संदेह संक्षिप्त समाचार अशिता के साथ आपको नमस्कार अशिता
6: नमस्कार हंसिनी श्रोताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सब लोगों का स्वागत है श्रावण मास की पावन अवसर पर मॉरिशस में विभिन्न हिंदू संगठनों और मंदिरों द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना अभिषेक और वैदिक परंपराओं का विशेष महत्व माना जाता है बात कुछ अलग करती हैं प्रणवेयत की एक पुरानी उपरत संस्था पर अब पर्दा गिर गया है बिस्मिल्लाह जो शहर के आखिरी बचे हुए पारंपरिक होटल में से एक था भवन मालिक की ओर से दायर मामले के बाद न्यायालय के आदेश पर बंद कर दिया गया है लगभग 6 दशकों तक लोगों की यादों से जुड़ा ये स्थान अब इतिहास का हिस्सा बन गया है इस पर हम ज्यादा जानकारी हमारे अन्य बुलेटिनों के दौरान आएंगे लेकर आएंगे एक बहुप्रतीक्षित डॉक्यूमेंटरी लुजिसे द पीपल इस सप्ताह दर्शकों के लिए प्रस्तुत

0: की गई। इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों को शागो समुदाय के इतिहास, संघर्ष और उनकी नियति पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति देखने का अवसर मिला। मॉरिशस दौरे पर आए इस डॉक्यूमेंटरी के निर्देशक सिल्वे नायडू ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत, इसके निर्माण की यात्रा और पर्दे के पीछे की कहानी के बारे में जानकारी दी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी चिंताजनक गति से फैल रही है। शुरुआत में कुछ क्षेत्रों तक सीमित ये संक्रमण अब देश के पूर्वी हिस्से के कई प्रांतों में पहुंच चुका है। इन इलाकों में लोग पहले से ही संघर्ष, जबरन विस्थापन और गंभीर खाद्य संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार ये स्वास्थ्य संकट अब एक मानवीय संकट का रूप भी ले चुका है। संगठन ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आपातकालीन खाद्य सहायता, लॉजिस्टिक सहयोग और परिवहन सेवाओं को मजबूत किया है। इसका उद्देश्य लोगों को संक्रमण नियंत्रण के लिए लागू प्रतिबंधों का पालन करने में सहायता देना और साथ ही दुर्गम क्षेत्रों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाना है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: We have your musical show up till 4 PM with Audrey Hansoni यहाँ पर on Radio Masti. Thank you for connecting with the best of गाने जो हम लेकर आ रहे हैं to celebrate your weekend, to celebrate your Sunday afternoon. और अभी it's tea time. चाय पकौड़े के साथ एंजॉय करिए आफ्टर आफ्टरनून को और मे बी कुछ आप बना रहे हो समथिंग स्पेशल तो ये भी इसमें और भी मीठा सा जाए यही हमारे गुड विशेस हैं फॉर एवरीवन एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट ओ संडे आज तो 2 अगस्त है एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ शालिनी सहदेव जो रहती है कच्चे मिले थे शालिनी जी हैप्पी बर्थडे टू यू लट्स ऑफ गुड विशेस है हमेशा आप स्वस्थ रहे हमेशा आप खुश रहे यही शुभकामनाएं हैं आपकी हॉट सिस्टर की तरफ से जो है पूजा बस उनसे कहना है वी जस्ट लव यू सो मच एंड यू मीन सो मच इन आवर लाइफ्स थैंक यू फॉर बीइंग द ऑसम डबल धमाका युवा ये है प्यारी सी पूजा की तरफ से टू यू हॉट सिस्टर शालिनी फ्रॉम पूजा एंड दिव्या रघु और सभी परिवार सभी जो आपके डियर वंस हैं सभी आए हैं टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे

0: रेडियो मस्ती।
1: यस yes, जितने भी हमारे दोस्त आज अपने स्पेशल दिन मना रही हैं, हंसनी और पोले टीम आई है टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर स्पेशल दिन।

0: Tag and play.
1: RM2.
2: ये था एक दोस्ती वाला नगमा हमारे सभी फ्रेंड्स के लिए, उनकी याद में ये था एक स्पेशल पेशकश स्पेशली फॉर शालिनी, पूजा एंड दिव्या के लिए। यहाँ पे दोस्ती का ये नाता है ना जो सबसे अलग है, सबसे खास होता है। दोस्ती वो रिश्ता है जो दिल से निभाया जाता है, हर खुशी हर गम में बस साथ दिया जाता है। सच्चा दोस्त नसीब वालों को बस मिलता है, हर मोड़ पर अपना फर्ज निभाता है। यही तो है सच्ची दोस्ती, वो दोस्त जो कभी हाथ नहीं छोड़ता है, वो दोस्ती का रिश्ता जो सबसे खास होता है।

0: हर दर्द में एक दोस्त ही पास होता है जो मुस्कुराहट की वजह बन जाए, तो वही आपका सच्चा यार है, सच्चा दोस्त होता है। तो यहाँ पर यार यारी के लिए बस ये शो चल रहा है, इट्स अ म्यूजिकल जर्नी विद द प्लग एंड प्ले, जहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स, कभी 90s, कभी लेटेस्ट गाने, कभी इट्स अ म्यूजिकल डोज ऑफ ग्रेट गाने जो हम लेकर आते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि जहाँ पर भी आप साथ निभा रहे हो, हम ले आ रहे हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट। तो यहाँ पर कोशिश तो हमारी ऑलवेज रहती है कि ताकि जो आपकी मुस्कान है वो कभी भी फीकी ना पड़े, ऑलवेज आप खुश रहें, ऑलवेज यू बी हैप्पी एंड यू बी सेफ, ये हमारी गुड विशेस है ऑलवेज एंड फॉरएवर। सो जहाँ पर भी यहाँ पर कनेक्टिंग विद रेडियो मस्ती, प्लीज स्टे सेफ एंड यू ही आप म्यूजिकल जर्नी का हिस्सा बने, जस्ट बी आवर म्यूजिक हम सफर अप टिल 4 PM।
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: The best of songs right in Plug and Play on Radio Masti. Thank you for listening. Thank you for being part of the show. यहाँ पर बस अभी time हो चला है to have some dedications. यहाँ पर प्यार के साथ जहाँ पर आपने time निकाला है to send a message. तो चलिए यहाँ पर आपकी बारी है to have your names. Simla ji, I have from Atiyoli. Thank you to you. और गाना आपके लिए हो जाएगा next one. Hi Hansini, Har Har Mahadev. Thank you ji, Har Har Mahadev आपको भी. Pranam to everyone from Veena Sambu. और घर पर अकेली, लेकिन हम सफ़र तो आप बन रही हो वो रेडियो मस्ती, राइट? आप अकेली तो नहीं हो. यहाँ पर गाना है आपके लिए स्पेशली, खास तौर पे टू विश यू अ वेरी नाइस वीकेंड. और सभी संभू परिवार के लिए भी गाना जो है हम डेडिकेट करेंगे. नेक्स्ट वन फॉर हबी शेन के लिए, टू विश हिम हैप्पी बर्थडे. विशेस उनके लिए है फ्रॉम वाइफ यशना और सभी रामलगन और रामनारायण परिवार यहाँ पर आए हुए हैं टू विश Shane a very happy birthday. Good wishes hain aapke liye ji. Happiness and prosperity always aapke liye bana rahe, yahi hamari shubhkamnaye hain. Good afternoon everyone from Reena Sanjita from Katkuku. Yahan par aap aayi ho, so welcome to you. Gana hai for two babies ke liye jo hai, Pratyush and Duravansh. We have Shreena for Mama Renuka, Dad Manoj.

0: और पूरे हदयाल परिवार के लिए भी स्पेशल गाना. थैंक यू फॉर लिसनिंग. और आप लोगों के आने से इट्स ऑलवेज बीन प्रेशियस. प्रणाम बेटी, प्रणाम टू यू टू. होप यू आर डूइंग वेल. यस सर जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. वंडरफुल शो, वेल डन. यहाँ पे अप्रिसिएशन के लिए आपको धन्यवाद. लेकिन आपका नाम तो नहीं आया है, नाम जानेंगे तो यहाँ पर अच्छा लगेगा. और यहाँ पर गीता के लिए गाना फॉर सीता एंड सभी भोलोराम फैमिलीज के लिए भी जो शत बिनागस से है एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Tag and play.
1: RM2.
2: That was a beautiful one. Ekdom soothing wala gana tha. Female version ka barbaad wala song from Sanyara. Really hope you're enjoying the collection for Plug and Play. Yahan par hai Hansini jo aapke saath hai. And hum safar hum sab bane hue hain. चाहे आप कितने भी दूर हो लेकिन हमेशा रेडियो मस्ती के करीब आप रहते हो और जितने भी हमारे परिवार अब्रॉड से है बहुत दूर है मीलों दूर है लेकिन जो कनेक्शन है रेडियो मस्ती के साथ हैज ऑलवेज बीन सो स्पेशल तो यहाँ पर बंधन को जारी हम रखेंगे एकदम गहरा बनाने की कोशिश हम करेंगे एंड थैंकिंग यू फॉर ऑल योर लव एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट जो हमेशा आप हिस्सा लेते हो ऑन रेडियो मस्ती तो चलेंगे इस समय कनाडा जहाँ पर हमारे लिसनर्स से जुड़े हुए हैं हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम आई विश यू ऑल हैप्पी संडे हैप्पी वीकेंड यहाँ पे परी और बाबू सोना स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है आज ऑलवेज जहाँ पर प्यार के गाने होते हैं वहाँ पर वो चले आते हैं अपने प्यार को बयां करने के लिए राइट सो वंस अगेन वेलकम टू यू गाइस रेडी हो कि सब ठीक है ऑन योर साइड सब कुछ अच्छा है सब कुछ मीठा है और परी तो क्या कुछ कहना चाहती हैं लेट्स गो एंड चेक आउट परी कह रही है कि इतना कुछ कहकर भी कितना कुछ बाकी रह जाता है कर लूं चाहे कितनी भी बातें तुमसे ये मन कहाँ भर पाता है हाँ कितना भी गुजार लूं वक्त तुम्हारे साथ कितना भी गुजार लूं वक्त तुम्हारे साथ वो वक्त कम पर ही जाता है तुमसे दूर मन मेरा आखिर अब कहाँ ही लग पाता है तो यहाँ पर दूरियाँ जो है ख़त्म हो रही है प्यार बढ़ रहा है ये जो बंधन है प्यार का वो कुछ गहरा हो रहा है तो और क्या चाहिए इस वीकेंड को और भी स्पेशल बनाने के लिए राइट सो जब किसी से प्यार हो जाता है कितना प्यार होता है कैसा प्यार होता है लेट्स गो एंड एंजॉय

0: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.
1: That was आपके लिए इश्क द चेहरा from Border to really hope you enjoyed. That was for Rohan ji के लिए Rohan Ramluchan का welcome in the show. Thank you for appreciating the collection of plug and play. चलिए इसके साथ अभी time for me to say goodbye. Thank you so much. इतना सारा प्यार आप लेकर आए in आज का plug and play show. अभी 4 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद आएंगे RJ Sanjay लेकर आज का next show. That will be Bollywood. Tuk tuk tuk. See you soon. तब तक के लिए stay safe. I wish you a happy weekend.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: शाम के चार बज रहे हैं। सुनते समाचार आष्टा के साथ नमस्कार।
6: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। पुनः उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले सेकंड हैंड कपड़ों की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच इन कपड़ों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए तमागा में हाल ही में ओपन हाउस नामक एक बुटीक शुरू किया गया, जहाँ सेकंड हैंड कपड़े उपलब्ध कराई जाती है। गैर सरकारी संगठन एन एंजल की पहल पर शनिवार को आयोजित पुनर्वनीकरण दिवस में स्वयं सेवकों, विद्यार्थियों, परिवारों और जूनियर चेंबर इंटरनेशनल के सदस्यों ने भाग लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण खोज भी सामने आई। इसमें मैकाक नामक एक दुर्लभ स्थानिक वृक्ष प्रजाति की पहचान की गई, जो मॉरिशस की जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और देश की प्राकृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों को भी रेखांकित

0: करती है। मॉरिशस के खेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू हो गया है। रिशा सुनी के 28 वर्ष बाद मॉरिशस ने राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार फिर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ग्लासगो में आयोजित प्रतियोगिता में 90 किलोग्राम से कम भार वर्ग के जूडो खिलाड़ी रेमी फेये ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उनकी ये ऐतिहासिक जीत मॉरिशस के खेल इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में नीट 2026 के बाद मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ने घोषणा की है कि काउंसिलिंग के पहले चरण के लिए पंजीकरण आगामी 5 अगस्त को शुरू होगा। उम्मीदवार अपनी राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर मेडिकल विश्वविद्यालयों का चयन कर सकेंगे। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Music, Takta Kata. RM2, Radio Musti.

0: संगीत के सभी दीवानों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती आपकी संडे संडे शाम संजय के साथ विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी नाइस लिसनिंग अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक
1: म्यूजिक टक टक
2: आरएम2 रेडियो मस्ती

0: म्यूजिक टक टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 4:23 यू लिसनिंग टू रेडियो मस्ती संजय के साथ म्यूजिक टक टकाटक। अभी अभी जो गाना चला फ्रॉम द फिल्म अग्निपथ मुझे अभी मुझ में कहीं दैट वाज स्पेशली इलेश्री जी के लिए जिन्होंने कहा कि एग्जैक्टली 16 साल आज बीत रहे हैं जब पापा हमें छोड़ गए थे। ऑलवेज मिस हिम ऑलवेज लव हिम। इलेश्री जी पापा कभी छोड़कर गए ही नहीं। ही इज स्टिल हियर आपके चारों ओर आपके दिल में आपके हृदय में आपके हर एक हैबिट में आपकी हर एक सोच में। बिकॉज पेरेंट नेवर लिव देयर किड्स। नमस्कार आदाब वंस अगेन टू ऑल आवर लवली लिसनर्स। खासकर जिस समय रसोई घर में है किचन में है प्रिपेयरिंग टी हैविंग सम वेरी गुड टाइम विद द फैमिली। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द फैमिली।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: दोस्तों कल रात से हर एक न्यूज चैनल में बस इसी चीज की चर्चा हो रही है, द गोल्ड मेडल वन बाय हमारे हमवतन रेमी फुये इन द लेस दैन 90 जूडो कंपटीशन एट ग्लासगो। और आज जब के आखिरी दिन है, आज जब के क्लोजिंग सेरेमनी होने वाला है, सो इट्स टाइम फॉर यू टू प्ले वेव एमबीसी। दिस गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। Yes, play with MBCN Rajasthan Works and win exciting prizes. Stand a chance to win 4 entry tickets and 1 food coupon for the Jane's Little India's Shahid Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival powered by SBI and LIC as from 12th August 2026 to 16th August 2026 at SVICCPI as from 10 a.m. till 9 p.m. Experience 5 days of shopping, entertainment, and family fun featuring international hopping shop, international home shopping, entertainment shows, magic shows, fashion show, live performance by Indian Idol singer Parinay Jain, special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh Sir, Kanma show, blood donation camp, food festival, organized by Event Works Limited. So, अगर आप ये सब कुछ जाकर देखना चाहते हैं, इन सभी इवेंट्स के लिए टिकट हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें इस अगले सवाल का जवाब दें। आप हमें बताएं कि किस कहां पर, किस साल में और कहां पर मॉरिशस को कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल मिला था। आप हमें बताएं किस साल में और कहां पर और किसको, किस साल में कहां पर और किसको कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस को पहला गोल्ड मेडल मिला था। आपका जवाब ऑन 5499 12 94।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: तो हमने आपसे पूछा था कि किस साल में कहां और किसको कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत पहला गोल्ड मेडल मिला था, और सही जवाब है रिशा सनी। बॉक्सिंग में रिशा सनी 1998 एट कुआलालंपुर उन्होंने बॉक्सिंग फ्लाईवेट में मुशिस को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था, और उसके 28 बार 28 years later करात जूडो में, और दैट विल बी द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन जूडो थैंक्स टू रेमी फेये। सो सही जवाब देने के लिए जिनके नाम जाता है आज का ये इनाम,

entry tickets and 1 foot coupon for the Jane's Little India's Shahi Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI and LIC, as from 12 August 2026 to 16th August 2026 at SBI CC Pi. सुबह के 10 से लेकर शाम के रात के 9 बजे तक किसके नाम जाता है ये सभी के सभी इनाम. Abhishek Chitaman from Royal Road, Saint-Julien, Dotmont. Yes, Abhishek ji, आपको बधाई हो. आपको बहुत जल्द हमारे यहाँ से एक PA फोन करेगा या फोन करेगी to let you know how to proceed to avail of your prize. बधाई आपको. और जितने भी लोगों ने खेला आप निराश ना होए. More of ये गेम्स आते रहेंगे और आपको भी जीतने का अवसर प्राप्त होगा.

0: म्यूजिक टकटका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक टकटका टक संजय के साथ। थैंक यू फॉर योर न्यूमरस मैसेजेस। आप जो घर पर से काम पर से हमें मैसेज कर रहे हैं, अब्दुल और सहरबानु, आपको हमारा सलाम। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती ऑन दिस संडे आफ्टरनून। विशिंग सिस्टर इन लॉ विमिता जयराम ऑफ लेस्पेरांस पीटन, जिसे हम प्यार से पम भी कहते हैं। बेस्ट विशेज फ्रॉम सिस्टर इन लॉ दिया दुर्गा ऑफ ग्रीष्म सेंट्रल फ्लैग, हबी विजय, बेटे कुशल एंड आदर्श, बहू केशनी। We all wishing you good health and lots of blessings. So, Masti team ki or se bhi Vimita ji ko very happy birthday. Happy birthday equally to Kumaran Chinapian of Saint-Julien Village, from Savita Krishna Kavishni, Anshi and Mama Maya Lakshmi.

0: प्यार तो होना ही था। बासन रोड का ट्रिबून की माला जी लिखती हैं कि रिश्ते दिल से बनते हैं, शब्दों से नहीं। कुछ लोग बिन कुछ कहे अपने बन जाते हैं। माला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज के लिए। नेक्स्ट वन गोज फॉर यू एंड फॉर योर होल फैमिली।
1: Music, Tak Tak Tak. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: बजकर 26 मिनट तक टकाटक संजय के साथ अप्रैल 7 ये प्यार गहरा होता जाए ऐसी हमारी मनोकामना अनिता जी ने मैं याद किया फ्रॉम फ्लक विशिंग ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू तेज बंधु ऑफ फ्लक विशिंग विशेस कमिंग फ्रॉम मीला काजल करिश्मा अनिता एंड गॉन अनिता रा हैप्पी संडे टू ऑल लिखते हैं थैंक यू अनिता जी आपके इस मैसेज के लिए Moving on very quickly to the next one, wishing Beti Shweta and Damad Roshan Hukum a very happy journey. They are going to Bariat. Is it Bariat or is it Bharat? Anyway, wishing aap dono ko a safe travel jahan par bhi aap ja rahe honge. Jitne bhi log is samay hamara saath nibha rahe hain. So wishing Satyam a bon voyage from someone jo aapko bahut hi chahti hain and for all those jo is samay kaam par hamara saath nibha rahe hain wishing you all bon courage and enjoy this musical safar despite the rainy weather

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: म्यूजिक टकटकाता
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: आज के इस सेगमेंट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट फोर कोर स्टाइलिंग रूल्स। जो पहला रूल है उसे कहते हैं द थर्ड पीस, दूसरा रूल है उसे कहते हैं फोकस ऑन फिट, तीसरा रूल है यूज न्यूट्रल्स और चौथा रूल है कंफर्ट मैटर्स। तो बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट रूल जिसे कहते हैं द थर्ड पीस। एग्जाम्पल इसका ये है कि एड अ जैकेट, एड अ बेल्ट वो स्टेटमेंट एक्सेसरी टू बेसिक टू पीस आउटफिट लाइक जीन्स एंड टी शर्ट टू इंस्टेंटली फिनिश योर लुक। सिंपल, या तो आप एक जैकेट पहन ले, या तो एक बेल्ट पहन ले, या तो कोई और स्टेटमेंट एक्सेसरी पहन ले और ए टू पीस, और इससे निखार आ जाएगा अपने आपके स्टाइल पर। द सेकंड रूल, कोर रूल इज फोकस ऑन फिट। ऐसे ही कपड़े आप खरीदिए दैट मैच योर एक्चुअल साइज।

0: ना कम साइज का ना बड़े साइज का, लेकिन जो आपके साइज को एकदम ही फिट करे। टेकिंग ill-fitting आइटम्स टू टेक ill-fitting आइटम्स टू लोकल टेलर एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि आज जो जमाना है प्रेत-अ-पोते का। सो आप उसे ले जाएं एक दर्जी के यहाँ और उसको आपके साइज पर फिट करें। थर्ड कोर रूल, यूज न्यूट्रल्स। बिल्ड योर वार्डरोब अराउंड ब्लैक, वाइट, ग्रे, बेज एंड नेवी, सो दैट एवरीथिंग एल्स मिक्सेस, एवरीथिंग मिक्सेस इजीली। और चौथा जो हमने कहा, कंफर्ट मैटर्स। ओनली बाय आइटम्स दैट फील गुड ऑन योर बॉडी। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए आप हाई हील्स पहने और इससे आप अनकंफर्टेबल फील करें। सो ओनली बाय आइटम्स दैट फील गुड ऑन योर बॉडी। डिसकंफर्ट शोज इन योर पोस्चर एंड इन योर कॉन्फिडेंस।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: Music, Tuck Tuck Tuck.
3: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: Thank you for choosing Radio Masti to spend your afternoon, your Sunday afternoon wherever. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए every Sunday ऐसे and enjoying this musical ride for enjoying ये सफर. आपसे दरख्वास्त है कि जब भी आप हमें मैसेज करें please do write your name in your messages. विजय जी की ओर से ये गाना जाता है

0: उनकी पूरी फैमिली के नाम थैंक यू विजय साहब और ये नेक्स्ट गाना चाहते हैं फॉर रामलोर फैमिली आज अमृता जी का जन्मदिन है एंड विशेस कमिंग फ्रॉम किशन रामलोल जो कैनट से हमारा साथ निभा रहे हैं अपनी पत्नी अमृता जी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं टुगेदर विद बच्चे अंशिका गिरीश सिमिक्षा केशा एंड इक्वनी फ्रॉम आयांश
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं क्या मोड़ आया है कहानी में वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में

जी हाँ डियर लिसनर्स, कुछ ही मिनटों में शाम के 6 बजाएंगे, समाचारों का वक्त हो जाएगा। Thanking you from deepest in our heart for your fidelity and for your dilchasbi Radio Mercy ke programon mein. So milte hain in a few seconds time, in a few minutes time after the news. Stay tuned on Radio Mercy.

2 अगस्त 2026 के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 28 वर्ष बाद राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस ने फिर जीता स्वर्ण। जुडोका रेमी फेये ने रचा इतिहास। विजन 2050 के तहत मॉरिशस वर्ष 2050 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाकर $50 बिलियन तक पहुंचाने की दिशा में अग्रसर है। चागोस मुद्दे पर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच वार्ता जारी। जिगुगोशा विधेयक जल्द ब्रिटिश संसद में होगा पेश। मॉरिशस में जल संकट गहराया। सितंबर से मोवाक्वा और लानिकोलिया जलाशय सूखने की आशंका। प्रतिबंधों की तैयारी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का प्रकोप बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता तेज की है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस के खेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। रिशो सुनी के 28 वर्ष बाद मॉरिशस ने राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार फिर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ग्लासगो में आयोजित प्रतियोगिता में 90 किलोग्राम से कम भार वर्ग के जुडो खिलाड़ी रेमी फेये ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उनकी ये ऐतिहासिक जीत मॉरिशस के खेल इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इस पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट।

इस पल का कब से इंतजार किया जा रहा था। 28 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कॉमनवेल्थ खेलों में मॉरिशस की राष्ट्रीय धुन बजाई गई। फाइनल में कनाडियन गियोम गुले के साथ स्पर्धा में मॉरिशियन रेमी फेये ने एक कड़ी मुकाबले में अपना दबदबा बनाया रखा। दृढ़ता के साथ उसने ये जीत अपने नाम किया। 33 साल की आयु में रेमी फेये ने मॉरिशस को पहला मेडल दिलाया बॉक्सिंग में। इससे पहले

0: 1998 में क्वालालंपुर में ऋषभ सैनी ने मुक्केबाजी में मॉरिशस को गोल्ड मेडल जिताया था। मुझे नहीं पता था मॉरिशस को गोल्ड मेडल मिले 28 साल हुए हैं, और भी गर्व होता है, बहुत खुश हूँ, सभी को धन्यवाद।
1: Yes, exactly. Just use it wisely.
0: Birmingham में 2022 में रजत पदक पाने वाले रोमी फेये मॉरिशियन जुडोका में अग्रणी होने की अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने मॉरिशियन चौरंगा की शान की रक्षा की और देश के लिए एक नए हीरो बन गए।
1: The man from Mauritius delivers a second ever gold medal at the Commonwealth Games for his country. Fouillet is about to receive Mauritius's second ever Commonwealth Games gold medal.
0: Judoka mein Mauritian mukkebaz ne na keval jeet hasil ki apitu itihas bhi rach diya.
1: Celebrations as well. A gold medal to Rémi Fouillet.
2: अन्य खबरों में ग्लासगो में आयोजित पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में मॉरिशस के लिए एक शानदार शाम रही। नोएमी अल्फोंस ने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर T54 स्पर्धा में रजत पदक का अपने नाम किया है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मॉरिशस की इस एथलीट ने शीर्ष स्तर पर अपनी निरंतरता साबित की है। उनकी ये उपलब्धि देश के पैरा खेल क्षेत्र के लिए एक और गौरवपूर्ण क्षण है। यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो मोहवाक्वा और लाकनिकोलिया जलाशय सितंबर महीने से सूख सकती हैं। देश में जल की स्थिति को गंभीर बताया जा रहा है। इस बारिश के मौसम में अनुमान से 37% कम वर्षा दर्ज की गई है। आने वाले हफ्तों में जल आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारी कई प्रतिबंधों पर काम कर रहे हैं। इनमें सिंचाई, वाहनों की धुलाई और स्विमिंग पूल भरने के लिए पीने योग्य पानी के उपयोग पर रोक जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जल कटौती लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। यचना मिश्रा का विवरण।
3: लानिकोलिया जलाशय 48% भरा है, जबकि एक साल पहले ये 100% भरा हुआ था। देश के उत्तर में आपूर्ति कराने वाले इस जलाशय की स्थिति में जल्द सुधार का कोई संकेत नहीं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी का मानना है कि यदि स्थिति बनी रही तो सितंबर तक ये जलाशय पूरी तरह सूख सकता है।
4: La situation en ce moment est critique. Morovakwa et Nicolia sera à sec septembre et octobre.
3: स्थिति गंभीर है। कुछ नहीं किया गया तो सितंबर अक्टूबर तक मोवाक्वा और निकोलिया सूख जाएंगे। ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले महीनों में कम बारिश होगी। एक महीने पहले निकोलिया 72% भरा था और अब वो 48% भरा है, यानी एक महीने में पानी का स्तर 24% से घटा है। 20% मिट्टी का पानी है जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। भूमिगत जलाशयों की भी यही स्थिति है। आने वाले दिनों में जल संसाधनों के संचालन पर कई कदम उठाए जाएंगे। जल भंडार को सुरक्षित रखना और उसे अधिक समय तक उपयोग में लाने पर विचार किया जाना होगा।
4: Nous pouvons envisager une véritable restriction et dans le nord évidemment les concerne l'agriculture et domestique.
3: प्रतिबंध का विचार कर रहे हैं। इससे उत्तर में खेती और घरेलू कामकाज प्रभावित होंगे। गाड़ी धोना, स्विमिंग पूल भरना, ये सब वर्जित होगा। अगले हफ्ते मंत्रालय के साथ बैठक के दौरान हम कदमों पर चर्चा करेंगे जो मंगलवार या बुधवार तक लागू होंगे। जितना अनुमान लगाया गया था इस सर्दी के मौसम में, इस अनुमान का 37% बारिश ही दर्ज हुआ है। देश के सभी बांधों में कुल मिलाकर लगभग 58 मिलियन वर्ग मीटर पानी का भंडार है, जबकि पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा लगभग 84 मिलियन था। रविवार दोपहर हुई बारिश से लानिकोलिया के सूखे इलाकों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन जलाशय का स्तर संतोषजनक स्थिति तक पहुंचाने के लिए अभी इससे कहीं अधिक वर्षा की आवश्यकता होगी।
2: दशकों तक मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि

0: अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच विशेष पहुंच अनुकूल कर व्यवस्था और कम लागत वाले प्रबल श्रम बल पर आधारित रही, लेकिन अब ये पारंपरिक लाभ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए विजन 2050 परियोजना के तहत दो ऐसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो अभी तक मॉरिशस में अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। इनमें ब्लू इकोनॉमी, जीवन विज्ञान तथा औषधि उद्योग शामिल हैं। इस योजना का लक्ष्य 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का आकार 15.2 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। इस पर करुणा लालू का विवरण।
1: मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को दशकों तक सफलता दिलाने वाला विकास मॉडल अब अपनी सेवाओं तक पहुंच चुका है, विजन 2050 परियोजना की एक प्रमुख निष्कर्ष है। पर्यटन, वित्तीय सेवाएं और विनिर्माण उद्योग जो अब तक अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ रहे हैं, भविष्य की आर्थिक वृद्धि को अकेले आगे नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टर विमल ठाकुर ने कहा, अब तक हमारे विकास को बढ़ावा देने वाले कारक नहीं रहे, वे लुप्त हो रहे हैं। गन्ने सेक्टर के लिए रियायती छूट नहीं रही, निश्चित दाम भी नहीं। मल्टीफाइबर संधि के खत्म होने के साथ विनिर्माण सेक्टर की भी यही स्थिति है। हमें नए मॉडल की ओर बढ़ना है जो श्रम शक्ति, टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडेड पर निर्धारित हो। विजन 2050 के अनुसार पर्यटन उन चिन्हित क्षेत्रों में से हैं जिनका मूल्य बढ़ाना होगा। मकसद संख्या के बजाय उच्च गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। अजय झरी कहते हैं, आय बढ़ाई जा सकती है, ये भी देखना होगा कि आने वाले पर्यटकों से सभी का फायदा हो, न केवल बड़े या छोटे होटलों को। आज अन्य किस्म के आश्रय हैं जिससे पर्यटक स्थानीय संस्कृति में भी घुल मिल सकते हैं, इससे पैसे का वितरण संतुलित रूप से हो सकता है। उच्च मूल्य वाली कृषि भी विजन 2050 के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। इसके साथ उन्नत विनिर्माण क्षेत्र को भी खास महत्व दिया गया है। सीमित भूमि पर अधिक उत्पादकता हासिल करना और कृषि उत्पादों को कच्चे रूप में निर्यात के बजाय उनकी प्रोसेसिंग करना है। रक्षा सरजवा ने कहा, उदाहरण के लिए यदि मानियों को प्रोसेस कर आटा बना सकते हैं और आटे के आयात को घटा सकते हैं, यानी विदेशी मुद्रा की अदायगी भी कम कर रहे हैं, इससे स्थानीय किसानों का भी समर्थन कर रहे हैं। इसमें उपकरण, बिजली, श्रमिक शक्ति, मॉरिशस में इसकी बहुत लागत है, इसलिए हमें समर्थन भी चाहिए। विजन 2050 के अनुसार वर्ष 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का आकार 3 गुना करने के लिए उच्च मूल्य वाली सेवाओं का जीडीपी में योगदान लगभग 40% तक बढ़ाना होगा, जो अभी लगभग 25% हैं। दो ऐसे क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जिनमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मॉरिशस में उनका कम विकास हुआ है। 2050 तक 50 बिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था अभी 15 बिलियन रुपए के करीब है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करना है। ब्लू इकोनॉमी और लाइफ साइंसेज एंड फार्मा, इन सेक्टरों को कैसे समर्थित कर सकें, श्रम शक्ति की किस्म को बढ़ाना ताकि वे अनुकूल ढल सके, मूल ढांचे भी देखने हैं, पानी और बिजली भी, ताकि विकास को ये बाधित न करें। विजन 2050 अब आम जनता की टिप्पणियों के लिए खुला है। लोग शुक्रवार 7 अगस्त तक अपने सुझाव vision2050.gov.mu.org पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
0: अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने कहा है कि जिगो गौशा मिलिटरी बेस एंड ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी बिल आने वाले हफ्तों में ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के बदलाव का मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच शागुस मुद्दे पर चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गाविन ग्लोवर कल फ्लिकॉन्फ्लाक में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक संगोष्ठी के दौरान शहजाद जुमन ने की सवालों का जवाब दे रही थी। अपने संबोधन में अटोर्नी जनरल ने शागुस मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि शागुस मूल के मॉरिशनों की गरिमा को इस ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाना चाहिए। विवरण करुणा लालू का है।
1: नए प्रधानमंत्री के बयान से हमें आश्वासन मिला है और हम सोचते हैं कि अच्छी राह पर आगे बढ़ेंगे। FCDO के साथ लगातार संपर्क कर रहा है। स्टॉमक

0: के जाने से पूर्व या बर्नहम के आने के बाद अभी के लिए ये पता चला है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पावेल अपने पद पर बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय में राउटी भी अपने पद पर हैं, जिनसे मेरा संपर्क रहा है। ये अच्छी खबर है और सोचते हैं कि आने वाले हफ्तों में बरतानी संसद में इस बिल के साथ आएंगे।
1: एक बहुप्रतीक्षित डॉक्यूमेंटरी लुजिसे द पीपल इस सप्ताह दर्शकों के लिए प्रस्तुत की गई। इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों को शागो समुदाय के इतिहास, संघर्ष और उनकी नियति पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति देखने का अवसर मिला। मॉरिशस दौरे पर आए इस डॉक्यूमेंटरी के निर्देशक सिल्वे नायडू ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत, इसके निर्माण की यात्रा और पर्दे के पीछे की कहानी के बारे में जानकारी साझा की। और अब रुख करते हैं हम देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से का, जहां स्थित है ले शोंदानी होटल। ये प्रतिष्ठित होटल अगस्त की शुरुआत में अपने अस्तित्व के 35 वर्ष पूरे कर रहा है। इस होटल की खासियत ये है कि इसका निर्माण एक ऐतिहासिक स्थल पर किया गया है, जहां कभी मॉरिशस का पहला समुद्री पर्यटन होटल ले शालों स्थित था। एक अग्रणी पर्यटन प्रतिष्ठान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ले शोंदानी आज भी मॉरिशस के होटल उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पर क्लोदे जोफा की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
2: समुद्र तट के पास वाले देश के पहले होटल के अब कुछ बीम्स, कुछ खंडहर और ढेर सारी यादें ही बची हैं। ले शालों की कहानी आज उन लोगों की जुबानी जीवित है जिन्होंने कभी यहाँ काम किया था, जब पर्यटन उद्योग की शुरुआत हो चली थी।
3: À cette époque-là, nous tenions surtout pour les chambres. Nous tenions les fameux Balifatak, nous tenions Boschkoko, nous tenions l'acier pour mettre pour passer le vinyle. C'est ça l'équipe qui faisait.
2: प्रेम की तरह आनिक भी उसी जमाने से हैं, जिसने मॉरिशस के समुद्र तट के पर्यटन उद्योग की नींव रखी।
4: J'ai beaucoup avancé, la famille, les enfants, j'ai voyagé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès j'ai fait dans la famille avec mon travail ici au Chambrani.
2: आज यही अनुभवी लोग अपने ज्ञान और अनुभव को उन युवा पेशेवरों के साथ बांट रहे हैं जिन्होंने होटल उद्योग को अपना कैरियर चुना।
5: J'ai fait la formation PEJ en 2024 et après ça j'ai commencé à la réception comme c'est pour apprendre.
6: Bonne commencer bas pas qu'un dernier. Aujourd'hui, c'est son animal premier la case, vous allez dire. La plupart du temps, c'est ici qui m'oblige, c'est qui chez moi.
2: साल दर साल ले शोंदानी इस क्षेत्र की चुनौतियों को पार कर लोगों को आकर्षित करता चला आया है।
7: Le monde du tourisme connaît certaines difficultés à travers le monde.
2: दुनिया भर में पर्यटन क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। प्रेस और आहिम के आंकड़ों से देखा गया कि मॉरिशस में स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि यहां सुरक्षा है, लोग खुश रहते हैं और एकता बरकरार है। ये होटल टिकाऊ विकास की ओर भी बढ़ता गया। 40% कूड़े की रिसाइकलिंग होती है, 100% वाटर वेस्ट की रिसाइकलिंग और प्रांगण की सिंचाई के लिए 6000 लीटर बारिश का पानी जमा किया गया है।
1: श्रावण मास के पावन अवसर पर मॉरिशस में विभिन्न हिंदू संगठनों और मंदिरों द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना, अभिषेक और साथ ही वैदिक परंपराओं और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का विशेष महत्व माना जाता है तथा वेदों का प्रचार भी किया जाता है। इस पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। श्रावण मास के शुभारंभ के अवसर पर हिंदू हास द्वारा गंगा तालाब स्थित सोमनाथ स्पिरिचुअल मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम का

0: ça Maulana Felicia Ben Mas, tout ce qu'il nous fait, nous gagne du. Nous venons faire la prière Shiv.
1: Hum Shravan Mas mein devon ke dev Mahadev ke puja karte hain aur Swami Dayanand ke teaching par chalte hain.
2: पिछले शुक्रवार को हुए इस समारोह में यजमानों, श्रद्धालुओं और विशेष अतिथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र जल यात्रा से हुई।

0: तालाब से पवित्र जल एकत्र कर भगवान शिव के 108 शिवलिंगों पर अभिषेक के लिए अर्पित किया।
1: हमारे कर मतलब बहुत बात हो रहा बोला भाग के बाद बाईसन में पच्चीस पे हुई के आज हम के बहुत भाग के बाद बाजे हमने गंगा जल से आन के शिव पर चढ़ावत है जा
2: शिवलिंग में पानी गिराव सर और रोज के आप सर पानी गिराई पजीर के
1: सब
0: श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण और भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की।
3: इस पावन मास में हम सब जानते हैं कि शिव जी ने विष पीकर संसार को बचाया है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं इस महीने मेडिटेशन भजन कीर्तन अभिषेक सारे मंदिरों में किया जाता है। 23 को यहाँ पर एक मुर्गा टेम्पल है जहाँ पर हम कावेदी का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है जब मुर्गा है तो उनको कावेदी देना पड़ता है, तो यहाँ भी 23 अगस्त को आयोजन किया गया है और हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि इन पूजा में भाग लें और इस पावन महीने का खूब लाभ उठाएं।
0: वहीं मौसिस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा त्रियुली स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक मंदिर में भी श्रावण मास 2026 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अनुयायियों ने वैदिक यज्ञ प्रवचन और भजन सत्र में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैदिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना और हिंदू समुदाय में आध्यात्मिक जागृति का प्रसार करना था। वैदिक मंत्रों की गूंज श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया और अपनी परंपराओं से जुड़ने का संदेश दिया। श्रावण मास के दौरान देश में हमारी शाखाओं में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और अगले 7 से 9 अगस्त तक त्रियुली इंटरनेशनल कॉलेज में महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है तथा पूर्णाहुति हम राष्ट्रीय स्तर पर बिलमौर के सनराइज हॉल में करेंगे।
4: सनराइज हॉल बिलमौर।
0: इसके अतिरिक्त श्रावणी मास महोत्सव के अंतर्गत गहलोत राजपूत महासभा द्वारा पोटली स्थित राजपूत मंदिर में महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने वेदों की शिक्षाओं पर चिंतन किया। यज्ञ और भजनों के आयोजन ने वातावरण को और अधिक पवित्र एवं आध्यात्मिक बना दिया। श्रावण मास के इन आयोजनों ने इस बार फिर मॉरिशस में हिंदू संस्कृति धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों की एकता एवं निरंतरता को दर्शाया है।

मुसलमान सेंट एंड्रे में शनिवार 18 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न की गई। भारी संख्या में भक्तों ने भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन किए और रथ खींचकर अपनी आस्था प्रकट की। प्रसिद्ध ब्रिटिश नेपाली पर्वतारोही निर्मल पूर्जा और उनके अभियान के 9 अन्य सदस्य पाकिस्तान में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर आए हिमस्खलन की चपेट में आकर मारी गई है। और उधर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी चिंताजनक गति में फैल रही है। शुरुआत में कुछ क्षेत्रों तक सीमित ये संक्रमण अब देश के पूर्वी हिस्से के कई प्रांतों में पहुंच चुका है। इन इलाकों में लोग पहले से ही संघर्ष, जबरन विस्थापन और गंभीर खाद्य

0: संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार ये स्वास्थ्य संकट अब एक मानवीय संकट का रूप भी ले चुका है। संगठन ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आपातकालीन खाद्य सहायता, लॉजिस्टिक सहयोग और परिवहन सेवाओं को मजबूत किया है। इसका उद्देश्य लोगों को संक्रमण नियंत्रण के लिए लागू प्रतिबंधों का पालन करने में सहायता देना और साथ ही दुर्गम क्षेत्रों तक जरूरी राहत सामग्री पहुँचाना है। और रूस की राजधानी मॉस्को में एक रेस्टोरेंट में एक विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 21 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार ये विस्फोट एक महिला के पास मौजूद एक घर में बनाए गए बम के कारण हुआ। पुलिस के मुताबिक ये घटना मॉस्को के कुनरिस्काया इलाके में स्थित 7 प्रसिद्ध स्काईस्क्रेपर्स में से एक की अंडरग्राउंड पर स्थित इटालियन रेस्टोरेंट बाल्जी रोसी के पास हुई। मामले की जांच जारी है। इस पर तथा अन्य खबरों पर विस्तार इस रिपोर्ट में विधिमा सिब्रन के साथ।
1: मॉस्को के एक इतावली रेस्टोरेंट में एक देसी विस्फोट होने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति ने बताया कि विस्फोटक ले जा रही एक महिला ने रेस्टोरेंट में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। पेरू के दक्षिणी इका क्षेत्र में शनिवार को एक छोटे विमान के खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 13 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिला है कि पीड़ितों में 11 पर्यटक, पायलट और सह पायलट शामिल थे। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। शनिवार दोपहर इदाओ के ट्विन फॉल्स स्थित एक इन एंड आउट बर्गर रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। फुटेज में संदिग्ध बंदूकधारी को एक वाहन पर कई गोलियां चलाते हुए देखा गया, जिसके बाद उसे मार गिराया गया। यूरोप के जंगली आग का संकट शनिवार को पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में कम हो गया, लेकिन इसका सबसे खतरनाक फैलाव ग्रीस की तरफ हो गया। स्पेन में भीषण आग अब आगे नहीं बढ़ रही थी और पुर्तगाल की मुख्य आग नियंत्रण में थी। दक्षिण पूर्वी फ्रांस के वॉक क्षेत्र में एक अन्य जंगल की आग को काबू में करने के लिए लगभग 1500 दमकल कर्मी अभी भी जुटे हुए हैं। असम में लगातार आ रही बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री के अनुसार बाढ़ से 2251 गांव प्रभावित हुए हैं और हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शुक्रवार 31 जुलाई की रात से शनिवार 1 अगस्त तक केरल में हुई मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़ और व्यापक तबाही, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में के कारण 8 लोगों की मौत हो गई।
0: अब बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर, करुणा लालू के साथ।
2: पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ मस्करिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि इस बादल घिरे रहेंगे जो रह रहकर घने हो जाएंगे। आज रात और कल सुबह उत्तर, पूरब और सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर जारी रह सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 3 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने, साथ में पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 5:52 पर, सूर्योदय 6:38 पर।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसोल पर हमारी सहयोगी लुडोविक का साथ मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: sok sama chasuni Rai Road Cluny mein Rai Road Cluny mein 94 saal ki 94 years old ki Shrimati Achama Ramaswamy Shrimati Achama Ramaswamy paidashinam nagadu aur jinme aur jinhe अमम के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे तामलू रामास्वामी के घर क्लुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM नेहरू रोड ग्रैंड रिट्रीट में नेहरू रोड ग्रैंड रिट्रीट में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री विनोद मंगरू जिन्हें जैनजिंग के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर गौनगुतत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11:30 AM कॉम्बेलिन नंबर 2 ओंगेता में कॉम्बेलिन नंबर 2 ओंगेता में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री मुखराज नंदू जिन्हें राज के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी अंतवानेत नंदू के घर ओंगेता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 2 PM क्लेमेंशा रोड बेलियर रिवियर सेश में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृष्णा कुमारी रामनोरिस पैदाशी नाम अकू और जिन्हें सोना मैगजीन के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके बेटे कैलाश रामनोरिस के घर बेलियर रिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11:30 AM क्लेफोन नंबर तीन वाकुआ में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड की श्री जयप्रकाश गोबिन जिन्हें प्रकाश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके घर क्लेफोन नंबर 3 वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाएगी और वे पहले वाकुआ नगर पालिका में काम करती थी क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM जुवांस डिपिने में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंद नमोल जिन्हें सनातन के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे राज नमोल के घर जुवांस डिपिने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Music, Dr. Gatta.
3: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक चकचकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 6:40 नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ म्यूजिक टकटकटक सूथिंग रिफ्रेशिंग म्यूजिक रेडियो मस्ती की लहरों पर संजय के साथ विशिंग यू ऑल अ वेरी सूथिंग इवनिंग हमारे साथ

0: मैसेज है सुनील और सुशीमा लाजी की ओर से वी आर टुगेदर लाइक फ्रेंड्स बहुत अच्छा विशिंग देम हैप्पी एनिवर्सरी ये है मैसेज रीता जी की ओर से और उनके सभी दोस्तों की ओर से सो जितने भी लोग आज अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फॉर यू और बहुत सारा प्यार आपके अपनों की ओर से
1: RM2 Radio Musty
2: Feel the Musty

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: एंड टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। कुछ मिनटों में 7 बज जाएंगे और हमारे दोस्त निखिल भी आ चुके हैं आपका साथ निभाने। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड वीक अहेड और बेशक पानी को जाया मत करें, बिजी ड्राइव सेफली ऑन द रोड, बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि बच्चे अभी तक छुट्टी में हैं। सो एंजॉय योर फैमिली लाइफ एंड कीप ऑन वर्किंग फॉर द कंट्री। हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके बॉलीवुड सिज़लर में। ये आवाज़ है निखिल की और आप सुन रहे हैं RM2। जी हाँ, जिंदगी की स्पीड को थोड़ा सा कम करते हैं आज, रेडियो को वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाकर ये दो घंटे हम हर गीत के साथ फिर से सांस लेना सीखते हैं। ठीक, दो घंटे आपके मैसेजेस के साथ, आपके प्यार के साथ, आपकी फरमाइशों के साथ, आपके साथ। शुरू करते हैं इस गाने के साथ।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, ये था अदनान सामी की आवाज़ में दिल क्या करे फ्रॉम द मूवी सलाम ए इश्क। आपको भी किसी को सलाम भेजना है, आपके दिल को पता है क्या करना है, 5499-1294 पर आप भेज सकते हैं आपके प्यारे प्यारे फरमाइश, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल में कौन है, क्या चल रहा है, ये सब हम सुनना चाहते हैं। 5499-1294 आप बताइए हमको आपका हाल-ए-दिल।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, यहाँ पर शुरू करते हैं आपके पैगामों का सिलसिला, क्योंकि अभी से ही हमारे पास काफ़ी का सारे फरमाइशें आ चुके हैं, जैसे कि भाई देव की तरफ से फ्रॉम न्यू ग्रोव, जो कि अपनी प्यारी वाइफ वर्षा गंगू को कहना चाहती हैं आई लव यू। उनके शब्दों में माई लव फॉर यू ग्रो स्ट्रॉन्ग एवरी डे एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ, आई लव यू सो मच, थैंक यू। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच देव साहब, जो आपने हमारे जरिए अपना प्यार बयां किया। द नेक्स्ट मैसेज फ्रॉम ऋषि विदेशी, होप संडे वॉज जॉली गुड, आपका काफ़ी अच्छा गया, यू वॉचिंग आशिकी विद राहुल रॉय, क्या स्टोरी थी, क्या स्टोरी थी, क्या म्यूजिक था, क्या दौर था। जी हाँ, आपकी तरफ से ये अगला गाना आपकी मूडी गर्लफ्रेंड के नाम और आपके सभी दोस्तों के नाम, और मेरी तरफ से ये गाना सभी कपल्स के नाम, अगर आप डिनर के लिए बैठे हैं तो खास आपके नाम।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, चाहे वो पिछले साल के हों या पिछले मिलेनियम के, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो क्लासिक्स बन जाते हैं हमारे लिए। उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो कहीं ना कहीं मिट जाती है। जब भी कहीं पर भी वो धुन छिड़ जाती है तो वो एहसास, वो याद जो उसके साथ जुड़ा रहता है, वो हमेशा फ्रेश हो जाता है। ये सुनकर आपके दिमाग में क्या गाना चल रहा है आप हमें बताओ 5499-1294 पर। मेरे दिल में अभी चल रहा है ये क्लासिक। जी हाँ, अरिजीत सिंह से चलते हैं आशा भोसले की ओर।

0: Podcast, Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: आज की प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि काफी सारे दौर बॉलीवुड के काफी सारे दौर हम दिखाने वाले हैं अपने प्लेलिस्ट में, लेकिन आप एक बात देखिएगा कि चाहे दौर अलग हो, प्रोडक्शन अलग हो, वॉइसेस अलग हो, लेकिन जो स्टोरी रहती है, जो कहानी रहती है और उसके पीछे जो एहसास रहता है, वो हमेशा एसेंशियल है। यहाँ रिमिक्स के जरिए, रीमेक के जरिए पुराने मेलोडीज को नए नए लिसनर्स मिल जाते हैं, और कभी कभी एक आध ऐसे गाने होते हैं जो आपको ले जाते हैं आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके पहले प्यार की ओर, आपके दोस्तों की ओर। ये जो गाना मैं चलाने वाला हूँ, ये अगर आपको याद है तो आप ज़रूर बताना कि ये आपको किन किन के लिए याद दिलाता है।

0: हाँ ये डेडिकेट हम करेंगे खास रोशनी जी के लिए जो कि रिक्वेस्ट करने वाली थी लेकिन रिक्वेस्ट से पहले हमने ये चला दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली मैसेजेस. आप भेजते रहो. 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर फॉर टुनाइट.
1: बॉलीवुड सीज़लर
2: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, आपने अभी अभी अपना रेडियो हमारे पास ट्यून किया है तो आपको बता दें दैट यू लिसनिंग टू बॉलीवुड सिज़ला ओनली ऑन RM2. मैं हूं निखिल और दिन अभी सोने गया है, रात अभी अभी जगी है. इस सेकेंड आवर में इट्स मोर अबाउट म्यूजिक, इट्स मोर अबाउट यू एंड मी. ठीक है, पिछले महीने के कर्ज, आने वाले महीनों का फर्ज, सबको थोड़ी देर के लिए साइड में करके आज धुनों से बातें करते हैं. एग्जैक्टली द सॉन्ग दैट आई नीड फ्रॉम द मूवी सयारा, धुन.

ये अगला गाना भाई सूरज के लिए फ्रॉम लाल माची, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मस्त मेल वर्जन, लेकिन मस्त हमारे पास नहीं है, लेकिन ये मस्त से लिया मस्त गाना ओनली ऑन रेडियो मस्ती।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, ये था सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज़ में एकदम मस्त फ्रॉम द मूवी मस्त रुकी रुकी सी जिंदगी। जी हाँ, आप भी रुक रुक कर चल रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कहेंगे वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन लेकिन आपका स्पीड थोड़ा कम, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंतज़ार ज़रूर कर रहा है। अगर आप रोड पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, स्टे सेफ, ये गाना खास आपके लिए।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: August का पहला Sunday night और यहाँ पर सॉफ्ट रोमांटिक गाने चला रहे हैं. टोनी भैया को बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एक इस अगले गाने का, लेकिन साथ ही साथ हम करेंगे ये अगला गाना उनके लिए जो अभी भी काम पर हैं. संडे जो शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, हॉस्पिटैलिटी में हो, सिक्योरिटी में हो, हेल्थ केयर

ड्राइवर्स, बिजनेसेस, मेरी तरह एडिटर्स, क्रिएटिव पीपल, आपका संडे हमारे साथ. अगर आपको कोई भी डेडिकेशन करना है तो 5499-1294 इज योर मैजिकल नंबर. फॉलो टोनी भाई जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है फ्रॉम द मूवी कलंक, अ वेरी लवली सॉन्ग, खासकर सभी प्यार करने वालों के नाम.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, चांद आसमानों में आ गया, आप खिड़की खोलकर देख लीजिएगा. जी हाँ, लवली सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अलोन. कुछ ऐसे वॉइसेस होते हैं, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो हमें खुद नहीं पता कि हमें वो गाने कैसे पता होते हैं. वो बोल अपने आप चलने लगते हैं. और ये जो गाना हमें चलाने वाला हूँ फ्रॉम मूवी कल हो ना हो, इट्स वन ऑफ दोज सॉन्ग्स. अ लवली वॉइस अलका याग्निक जी, शान की आवाज़ में, कल हो ना हो का कुछ तो हुआ है. अगर आपके पास भी कुछ हुआ है, देन यू डोंट हैव मच टाइम. आप हमको मैसेज भेजो 5499-1294 पर. अब भी है आपके मैसेज का इंतजार. अभी के लिए वी हैव 30 मिनट्स टुगेदर, 30 म्यूजिकल मिनट्स, 30 लवली मिनट्स फॉर यू टू टेक अ ब्रीदर. लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉन्ग.

ये गाना हम डेडिकेट करेंगे खासकर माला जी के लिए, साथ ही साथ मीठी निकित जियाना रियान केशव बोला गुरु सीतोहल फ्रॉम वागुश पॉपलिंग के लिए।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, भागने की बात चल रही है तो भागता मन भी है और वक्त भी, दोनों को रोकना वैसे तो फिजूल है. बट नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय. आपके साथ और मैसेजेस के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया. जो काम कर रहे हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं, उनसे कहेंगे ध्यान से कीप बी केयरफुल. जो मंडे का टेंशन लेकर अभी से बैठ गए हैं, उनसे कहेंगे आपके हर डे को मस्त डे बनाने के लिए यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. मेरी तरफ से बस इतना ही. कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग लव. मिलते हैं अगले सैटरडे सेम टाइम सेम चैनल. कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.